0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अपने खाली डब्बिया बोतला तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनु असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नु बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नु दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

इट हैपेंस. जी हाँ, इसी सफर में सताक्षी के साथ हैं आप, रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर. वैसे हम सब प्यार की तलाश में भटक ही तो रहे हैं ना. हाँ भाई, हमें लगता है कि कोई आएगा, कोई हमारे जख्मों पर मरहम लगाएगा और हमें कंप्लीट महसूस करा देगा. लेकिन सच तो ये है कि यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. आप एक खुद अगर खाली कप हैं तो आप दूसरे को भर नहीं सकते. अगर आपका अपना दिल ही खाली है तो आप दूसरे को क्या देंगे और किसी और से क्या उम्मीद रखेंगे. सो सेल्फ लव कोई सेल्फिशनेस नहीं है, ये सर्वाइवल है. ये अपने आप को वो इज्जत और मोहब्बत देना है जिसके लिए आपने दूसरों के आगे अब तक हाथ फैलाए हैं. और इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप खुद को, खुद की फीलिंग्स को, खुद की इम्पॉर्टेंस को समझें और थोड़ा सा खुद के लिए आप अवेयर हो, खुद से बातें करें, खुद के साथ एक कॉफी डेट पर जाएं और खुद के साथ आप एक बेहतर जिंदगी प्लान करें. राइट, तो सबसे पहले, दूसरों से पहले आप खुद पर ध्यान दीजिए, खुद की केयर कीजिए और दूसरों से प्यार करने से पहले खुद से मोहब्बत कीजिए. सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस, रेडियो ब्रिस्फानी 1701 AM.

हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सुताक्षी के साथ दोस्तों रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 एम पर। दोस्तों आज के टाइम में सबसे बड़ा एडिक्शन जानते हैं क्या है? आज के टाइम में सबसे बड़ा एडिक्शन ड्रग्स या अल्कोहल नहीं है, बल्कि वो है जो हमारे हाथ में है, ये हमारा फोन। हम सोचते हैं कि हम बस टाइम पास कर रहे हैं, पर असल में हम एक इनविजिबल सिस्टम के अंदर फंस चुके हैं जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये सिस्टम हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है धीरे धीरे बिना किसी आवाज के। हम फोन यूज नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली फोन हमें यूज कर रहा है। डोपामाइन के बारे में सुना है? जी हाँ, डोपामाइन वही जो एक केमिकल है और जो आपको खुशी फील करवाता है। जब आप रील्स देखते हैं, गेम खेलते हैं, नोटिफिकेशन आता है, हमें एक छोटा सा हिट मिलता है और धीरे धीरे हमारा दिमाग उसी हिट का एडिक्ट हो जाता है। हमें हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए होता है जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सके। एक्चुअली हम खुशी नहीं ढूंढ रहे हैं, हम डोपामाइन ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए भाई इस डोपामाइन को थोड़ा सा कम कीजिए ताकि आप रिलैक्स हो सके और अपनी लाइफ को समझ सके, अपने आप को समझ सके, वाकई में आप अपनी खुशी को फील कर सके, ठीक है ना। आइए एक और ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ एंड सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। आप सुन रहे हैं मेरे साथ इट हैपेंस।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

रेडियो प्रस्थानी 1701 AM, आप है सदाक्षी के साथ और ये है आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। देखिए जी, ऐसा है कि जिंदगी में बहुत सारे जायके हैं, है ना, खट्टे मीठे तीखे, जिस फ्लेवर का खाना आप खाना चाहें वैसा ही खा सकते हैं, लेकिन इन जायकों का असली मजा जो है वो लोगों के साथ है और ये लोग भी कुछ जायके की तरह ही होते हैं। हमारी जिंदगी में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मसालेदार खाने की तरह होते हैं, हमें बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में वो हमारी हेल्थ को नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं। पिज्जा, बर्गर, इनका जो है खाना हमें बड़ा अच्छा लगता है, इनको इंजॉय करना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ वक्त के लिए। जिंदगी में सुकून या आपकी हेल्थ को अगर कोई चीज दुरुस्त रखती है तो वो आपके घर का खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी, वो खाना है जिससे आपकी हेल्थ भी दुरुस्त रहती है और खाने के बाद आप हल्का लाइट फील करते हैं, आपको सुकून मिलता है। कुछ ऐसे ही लोग हमारी जिंदगी में होते हैं, कुछ लोग जिनके साथ हम लाइफ को एंजॉय करते हैं ऐसे लोग होते हैं, और कुछ लोगों का हमारी जिंदगी में सिर्फ होना ही हमें सुकून देता है, उनका हमारे आसपास रहना ही हमें ये फील कराता है कि हम प्रोटेक्ट हैं। तो आपकी जिंदगी में ऐसा कौन है हमें बताइए रेडियो प्रस्थानी के हमारे फेसबुक पेज पर, और चलिए अभी इस अगले ट्रैक को एंजॉय कीजिए मेरे साथ।

अपन सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। और अब थोड़ी सी गहरी बात करूंगी क्योंकि बात है बहुत ही गहरी सच में डिप्रेशन की। देखिए डिप्रेशन ना आजकल मैं देख रही हूँ हर दूसरा इंसान बोलता है यार हम डिप्रेशन में, हमारी डिप्रेशन की दवा चल रही है। देखिए डिप्रेशन कोई एक दिन में आने वाली चीज नहीं है, धीरे धीरे आता है और ठीक उसी तरह से आता है जैसे शाम जब ढलना शुरू होती है ना तो धीरे धीरे अंधेरा होता है। शुरू में पता नहीं चलता कि रोशनी कम हो रही है, बस इतना महसूस होता है कि मन पहले जैसा नहीं रहा, हंसी अब मेहनत लगती है और चुप्पी ज्यादा सेफ लगने लगती है। डिप्रेशन का सबसे खतरनाक रूप ही है कि ये शोर नहीं करता, ये चीखता नहीं है, बस आपको थका देता है। सुबह उठना भारी लगता है, रात को सोने नहीं देता, भीड़ में आपको अकेलापन लगता है और अकेले में लगता है डर। आप जी रहे होते हैं लेकिन जीना महसूस नहीं होता। हर इंसान के डिप्रेशन की वजह भी तो अलग अलग होती है। किसी के लिए घरेलू स्ट्रेस, किसी के लिए रोज का तनाव, रोज की तकरार, रोज का अपमान, रोज की इंसल्ट, किसी के लिए अनसक्सेसफुल होना, चाहे वो एग्जाम्स में हो, नौकरी में हो, रिश्तों में हो या प्यार में हो, और किसी के लिए उम्मीदों का बोझ, चाहे अपने लिए हो या दूसरों के लिए, किसी के लिए वो दर्द जिसका नाम तक नहीं होता, वो लगातार अंदर ही अंदर चुभता रहता है। सो यस, देखा जाए तो डिप्रेशन एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे आता है और हमारे साथ जुड़े लोगों को, हमारे अपनों को समझ में भी नहीं आता है कि कई बार उनकी कही बातें, उनके एहसास, उनकी इमोशंस ही हमें डिप्रेशन की ओर या किसी इंसान को डिप्रेशन की ओर ढकेल रहे हैं, है ना। सोचिए, और अगर आपके आसपास आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, आपको कुछ भी अलग दिख रहा है उनमें, तो उस पर फोकस कीजिए। आइए एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is
2: 0400-234-235.
3: Get ready Brisbane. आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026. शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक. एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन. यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज. और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स. रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स. एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले. सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग. तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13. ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर. लॉग ऑन टू brisbane.com या mela carnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर. डोंट मिस इट.

जी हाँ, इट हैपेंस में आप सताक्षी के साथ दोस्त हो रही जो ब्रिस्वानी पर, और इट हैपेंस में आपके साथ आज भी हमारी कुछ गहरी और प्यारी बातें जारी हैं। फिलहाल बात करूंगी गलतियों की। जी हाँ, गलतियाँ होने पर ऐसा लगता है कि सामने वाले ने बड़ी गलती कर दी, मतलब उसे माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन देखिए, गलतियों को माफ करना किसी भी रिश्ते को निभाने की सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि हर इंसान से कभी ना कभी तो गलती हो जाती है ना, और बार बार उन गलतियों को याद दिलाना दोस्तों रिश्तों में दूरियां पैदा करता है, जबकि दिल से माफ कर देना उन्हें संभाल लेता है, उन्हें जोड़ देता है। माफी का मतलब ये नहीं है कि दर्द नहीं होता आपको, बल्कि इसका मतलब ये है कि उस दर्द से ज्यादा रिश्ते की कीमत आपने समझ ली है, उस रिश्ते की वैल्यू आपके लिए सबसे ज्यादा है। जब हम किसी की गलतियों को पकड़कर नहीं बैठते बल्कि उसे सुधारने का मौका देते हैं, तो वही सच्चाई से उस रिश्ते को निभाना बन जाता है। क्योंकि रिश्ते एक दूसरे पर आरोप लगाने से, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से नहीं, बल्कि समझदारी और मैच्योरिटी के साथ चलते हैं। इसलिए माफ करना सीखिए। और आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं एक और ट्रैक के साथ। इंजॉय कीजिए इसे। आंटी प्लस टू रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 FM।

सो भाई ये था आज इट हैपेंस पर सताक्षी का आपके साथ एक और साथ, एंड आई रियली होप कि आपने आज के साथ को ज़रूर महसूस किया होगा, ज़रूर इन्जॉय किया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा. तो बस कल कुछ बातें होंगी, कुछ हमारे आपके किस्से छिड़ेंगे और कल आपकी ज़िंदगी पर बहुत सारी बातें भी हम करेंगे आपके साथ, है ना. लेकिन अब आज के सफ़र से ये वक्त है इजाज़त लेने का, तो चलिए आज चलते हैं भाई. कुछ आपकी बातें हैं, कुछ आपके सपने हैं और कुछ मेरी भी थकान है भाई कि बहुत बातें हो गई हैं. तो बस कल मिलने का वादा है ना. तो आज यही कहूंगी कि यार जिंदगी को जीते रहिए, सेलिब्रेट करते रहिए, क्योंकि ये पल जो हैं यही जिंदगी के बहुत खास पल हैं. कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड इट्स ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग.

से जो पर सो पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

पढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हाथ दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

0: जा रही हूँ।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਡਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਡਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
3: ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਡਿੱਬੇ ਬੋਤਲੋਂ ਸੇ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਕਮਾਏ। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10।
4: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
9: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
10: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
11: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
12: आई आई आई सुदम से आई से आई से आई।
13: Yo,

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी तुसी बड़े हो जी थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 101.1 ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल तुसी बने हो ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही ज्यादा सोहना जिहा वेला हो चुका है जी। शुरू ते इस वेले दे दौरान असी गल्लां तां करनियां ही करनियां ने, नालों नाल असी इन्हां गल्लां नूं पंजाबी गीतां दा तड़का भी जरूर लगाउणा है। तुसी की करना है, तुसी जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो ब्रिसवानी 101.1 साडा फेसबुक पेज है जी brisawani@brisawani.com साडी ईमेल आई टी जरिए जेड़ा तुहानू चंगा लगदा ना तुसी ओ अपनाओ। बस सानू मतलब यह है कि तुसी साडे नाल जुड़दे जरूर रहने चाहिए हो। बेशक साडे अगे फरमाइशा रखो या फिर करदे रहो साडे नाल गल्ला, मर्जी थोड़ी है की है, जो मर्जी करो पर साडे नाल जुड़ो जरूर। तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। तो मैं की कहना मैं हुणे वापस आउनी है, गल्लां बातां असीं इसे तरीके दे नाल जारी रखांगे। उहना समां तुसी उहना सोहणे जिहे गीतां नूं इंजॉय करो।

0: नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही
0: विजिट करें। सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
3: ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਡਿੱਬੇ ਬੋਤਲੋਂ ਸੇ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਕਮਾਏ। ਆਪਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਯੋਗ ਖਾਲੀ ਕੈਨ ਬੋਤਲ ਔਰ ਕਾਰਟਨ ਪਰ 10 ਸੈਂਟ ਕਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਮ ਬਿਨ ਕੋਇਨ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਨ ਕੋਇਨ ਕੀ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਖਰਚ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਮੇ ਆਪਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਸ ਮੇ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਆਪਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਹੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
5: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
6: हाँ जी, मुंडा साधुआ था।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.01 ते जी आर छे संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए हो। इन्नियां सारियां साउथ दियां फिल्मां हैगियां ने ना कि मैं तो हुण साउथ मूवी लवर हो चुकी हां जी। इन्नियां शानदार फिल्मां ने, नाम हमेशा दी तरह सानू समझ नहीं आता हुंदा। अगली भी यही है दुरुवंगल पाथीनारू, मैनूं मतलब नहीं पता इसका पर कहानी बारे जरूर दसूंगी। तां इस फिल्म विच ना एक रिटायर्ड पुलिस अफसर की कहानी दिखाई गई है। पुलिस अफसर नूं उसका एक पुराने केस याद आता है जिसकी वजह नाल उसनूं अपने पैर गवाने पए सी। इस फिल्म के आखिरी सीन तक अंदाजा नहीं लगा पाओगे तुसी कि असली कातिल कौन हैगा। कतल की कहानी हैगी है, पता ही नहीं लगता, पता ही नहीं लगता। जियो हॉट स्टार से तुसी इसनूं इंजॉय कर सकते हो। तो इसकी IMDb रेटिंग बहुत शानदार है 8.2।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का

0: कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bin Coin. Save, spend or donate your Bin Coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is
4: 0400-234-235.
5: Get ready Brisbane! आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, The Grand Multicultural Mela Carnival 2026. शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक Under the Stars, Tarun Raniga, Ricky from Sydney और Diman Roy लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार Bollywood musical concert, full of energy and classical hits. And wait, रात को आसमान चमकेगा एक unforgettable fireworks display. सबसे best part, entry is absolutely free, including parking. तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, Saturday, June 13. ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
6: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर।
7: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Brisbane. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas.

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी पे।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
10: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
9: अच्छा, वो क्या?
10: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
9: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
10: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?

0: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा।
0: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
0: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: दुखी से जो बरसों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए।
1: ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक और फाइनल्स संडे 14 जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे अनियांशी निव्या के साथ, और मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरा इंतजार किया या नहीं किया। जी आप लोगों ने मुझे मिस किया या नहीं किया, और क्या अब आप इस प्रोग्राम के लिए तैयार हो या नहीं हो तैयार। वेल, ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में हैं, मेरे दिल में हैं, और मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ। लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इन केस आपने मुझे याद नहीं किया, मैं आने आपको पूरी तरह से याद किया। और इन केस आप इस प्रोग्राम के लिए रेडी नहीं हो, मैं इस प्रोग्राम के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। और इन केस आपने मुझे मिस नहीं किया, तो मैंने आपको पूरे तरीके से मिस किया। सो या मतलब आपने नहीं भी किया तो मैंने तो कर दिया, सो आई थिंक ये चलता है, राइट। इसी के साथ आपको तो पता ही है हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत ही ज्यादा खास है, और इवनिंग वाइब में हम वाइब बनाते हैं ऐसी कि आप वो दुनिया भर की मुश्किलात, स्ट्रेस और वो सारे के सारे बॉसेस के टेंट्रम सब भूल जाएं, क्योंकि इवनिंग वाइब में हम आपकी दिल की वाइब को समझते हैं और उसी पर अच्छे से अमल भी करते हैं। सो यहाँ पर अब हम तो तैयार हैं, और मुझे लगता है आप भी तैयार हो, और अगर नहीं हो तो हो जाइए, क्योंकि जल्दी से प्रोग्राम की शुरुआत होने वाली है। और प्रोग्राम की शुरुआत कैसे होती है? वेल, एक हेल्दी रिचुअल के साथ होती है। और वो हेल्दी रिचुअल क्या है? वेल, वो है डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। जी हाँ, डीप ब्रेथ एक्सरसाइज के साथ शुरुआत करेंगे। ये एक हेल्दी रिचुअल है जो हमें मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी रखता है। तो आइए सबसे पहले वही करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत एक बढ़िया से गाने के साथ, और ये है ख्वाबों के परिंदे। क्या बात है, मतलब पहले ही उड़ने वाली चीजों से शुरुआत हो रही है, मतलब उड़ना कौन नहीं चाहता है, राइट। सो आइए, अगर हमको परिंदा बनने का मौका नहीं भी मिला है, तो हम जो मिल गया है जिन्हें मौका, उनको सेलिब्रेट करते हैं और सुनाते हैं आपको ये बढ़िया सा गाना।

जी हाँ दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं ना कि अगर आप इस्तेमाल किसी ऐसी जगह पे करो जहाँ पर आप किसी को लुभाना चाहते हो, किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो, उनकी खूबसूरती की तारीफ करना चाहते हो और उनको प्रपोज करना चाहते हो, अरे मोहब्बत करना चाहते हो, तो वो गाने जो ना बहुत ही परफेक्ट होते हैं। सो अगर आपको भी किसी से मोहब्बत है, किसी लड़की से मोहब्बत है और आप इजहारे मोहब्बत करना चाहते हो, उनकी तारीफ में कुछ कहना चाहते हो, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट बेस्ट सॉन्ग। मतलब तेनी तकदा रहा, मतलब तुझे देखता रहूं, और मतलब क्या क्या कितनी खूबसूरत लाइंस है इसमें, और या यू कैन डू दैट। चलिए इसी के साथ यहाँ पर अब जरा चलते हैं सीधा मौसम की ओर, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। मौसम क्या कह रहा है इस के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि मौसम जो है वो हमारे प्रोग्राम्स को, प्लान्स को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले उसी के बारे में जानते हैं। 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो 20.1 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 22.2 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, ये तो दिन के टेम्परेचर की बात हुई, लेकिन अगर रात के टेम्परेचर की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप देख पाएंगे तापमान में। 80% चांसेस बारिश के और 1 to 5 mm जो है वो बारिश होने के आसार हैं। मैं देख पा रही हूँ बारिश जो है वो हो रही है, बट बहुत थोड़ी हो रही है और कहीं कहीं पर हो रही है। सो ऑफकोर्स आप मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ पर बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। कल ही की बात है, मेरे लिसनर से मेरी बात हो रही थी और वो बड़े ही अच्छे से बता रहे थे कि क्या करें क्या करें, ठंड ठंड ठंड लग रही है। और ठंड लगने का मेन कारण यही था कि धूप का जो है वो नामो निशान अच्छे से दिख नहीं रहा है। ये जो बारिशों में जो दिन बीत रहे हैं इसकी वजह से जो है वो ठंड जो है वो लग रही है। ऑल्दो टेम्परेचर इतना ज्यादा ड्रॉप नहीं हो रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली धूप ना निकलने की वजह से वो ज्यादा फील हो रहा है। ऑफ कोर्स टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है, लेकिन पहले जो एक दो दिन जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ था उसके मुकाबले कम है। बट द

और जैसे मैंने कहा था कि बारिश आपका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है और वो लेगी भी नहीं फिलहाल कुछ दिनों के लिए। इनफैक्ट आगे भी मैं बहुत दिनों तक फ्राइडे तक बारिश जो है वो देख पा रही हूँ, और फ्राइडे तक मतलब ये वाले से फ्राइडे से लेके अगले फ्राइडे तक मुझे बारिश जो है वो दिख रही है। थोड़ी कमी आ सकती है, बीच में थोड़ी कम हो सकती है, बीच में थोड़ी ज्यादा हो सकती है, पर दिख मुझे रही है। सो उसके लिए आप रेडी हो जाइए। और इसका मतलब एक और है कि आपको बिना छाते के, बिना रेनकोट्स के, ऐसी किसी भी चीज के बिना बाहर नहीं निकलना है अपने घर के, और थोड़ा देख के निकलिएगा क्योंकि बारिश की वजह से जो है वो ट्रैफिक जैम्स भी आपको मिल सकते हैं। सो उसी को अच्छे से देख के परख कर निकलिएगा। सो या बारिश है भाई, तो बारिश में आपको जो भी करना पसंद है वो कीजिए। और ठंड की बारिश आई नो थोड़ी सी ट्रिकी होती है, बट ठीक है, बारिश बारिश है, बारिश खूबसूरत है और खूबसूरती का आनंद उठाइए। नेचर ये आपको तोहफा देता है और इस तोहफे का आनंद लीजिए। यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: Fire ants, tuhade ilake vich maujood han. Je tuhanu lagda hai ke tuhade ghar ja jayadad vich fire ants han, ta is di suchna dio. Asi tuhanu fire ants de ilaaj layi ਮੁਫਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਡਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਡਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
3: ਅਰਨ ਮਨੀ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਐਮਟੀ ਡਰਿੰਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਵਿਦ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ। Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. Containers for Change ke madhyam se apne khali dibbe botlon se dhan rashi kamaye. आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिनकॉइन कहते हैं। अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स और चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
2: ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਖਾਲੀ ਕੈਨ, ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਕਾਰਟਨ ਉੱਤੇ 10 ਸੈਂਟ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਕੁਆਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬਿਨਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਖਰਚੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਨਾ ਕਿ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਫੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ 10 ਸੈਂਟ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
4: ਬਦਨ ਪੇ ਸਿਤਾਰੇ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਨ ਤਮੰਨਾ ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ।
5: ਗੈਟ ਰੈਡੀ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ।
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार शेनिविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं आपकी फरमाइशों की, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। और कैसे आप अपनी फरमाइशों की भी शुरुआत कर सकते हो हमारे आज के प्रोग्राम इवनिंग वाइब में, वो हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप हमारे पुराने लिसनर हो, हमारे प्रोग्राम को हमेशा सुनते हो, फिर तो आपको ये बात पता होगी। लेकिन अगर आप नए लिसनर हो, आपको नहीं पता, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके फेवरेट गाने आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो, फरमाइश कर सकते हो हमारे इस प्रोग्राम में, और हम उन्हें आपके लिए प्ले करेंगे। इनफैक्ट अगर आप किसी को कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हो तो वी आर गोना हेल्प यू विद दैट टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए। नंबर है +9182888717001। आई रिपीट, +9182888717001। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए भाई और कर दीजिए नंबर डायल और भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं, हमारी तरफ से एक और बहुत ही बढ़िया सा गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, तो एआई कंपनियों में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज एंथ्रोपिक, जिनका एआई मॉडल है क्लाउड, जी हाँ, उन्होंने ही एक और बहुत ही बड़ा काम यहाँ पर कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने एक और एआई मॉडल जो है वो लॉन्च किया है। पहले वो इसे लॉन्च करने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है पब्लिक यूज के लिए, पब्लिक एक्सेस के लिए, तो उन्होंने इसे रिलीज करने से मना कर दिया था, इसे पब्लिक करने से मना कर दिया था। लेकिन अब उनका कहना है कि उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, इसको सेफ गार्ड किया है ताकि लिमिट किया जा सके इसके पोटेंशियल मिसयूज को, जहां मिसयूज करने से बचाया जा सके इसके मॉडल को। जी हाँ, सो एंथ्रोपिक हैज रिलीज्ड अ पब्लिक वर्जन ऑफ इट्स लेटेस्ट एआई मॉडल आफ्टर प्रीवियसली सेइंग इट वाज टू पावरफुल फॉर वाइड स्प्रेड एक्सेस। जी हाँ, सो इसे रिस्ट्रिक्ट किया गया था, लेकिन अब फाइनली जो है इसकी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज के होते हुए भी कंपनी ने जो है वो कह दिया है कि हम इसे लॉन्च कर रहे हैं, और इसका नाम है क्लाउड फेबल 5 एंड इट इज द मोस्ट पावरफुल पब्लिकली अवेलेबल एआई येट। जी हाँ, क्लाउड ने प्रूव कर दिया था कि वो जो कर सकता है वो कोई भी और एआई मॉडल नहीं कर सकता, लेकिन क्लाउड का अब फेबल 5 आ गया है जो उन्होंने लॉन्च किया है अभी अभी, और पहले इसे वो लॉन्च करने से बच रहे थे क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन फाइनली उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस किए, इसको रिस्ट्रिक्ट किया इसके मिसयूज को, एटलीस्ट उन्होंने कोशिश की काफी हद तक, और अब इसे कर दिया गया है लॉन्च, और ये देखना होगा कि अब ये कैसे स्टॉर्म लेकर आता है। जी हाँ, ये तूफान लेकर आता है, क्योंकि क्लाउड जब आया था तो उसने वो चीजें करनी शुरू कर दी थी जो कि लिटरली कोई भी एआई मॉडल और एआई टूल नहीं कर पा रहा था। व्हेन वी टॉक अबाउट चैट जीपीटी, व्हेन वी टॉक अबाउट अदर यू नो एआई टूल्स, दे आर गुड, दे आर वेरी गुड, एंड चैट जीपीटी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमाल करने वाला, बहुत सारे लोग मेजोरिटी में उसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्लाउड इज समथिंग जब आप जो है वो प्रोटेक्शन को चूज करते हो। सो ये ना सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देता है, बड़े बहुत ही प्रोटेक्टेड वे में इन्फॉर्मेशन देता है, एंड दैट इज वाई एंथ्रोपिक एंड क्लाउड इज फेमस इन द फर्स्ट प्लेस। और इनफैक्ट बड़े बड़े जो कंपनीज है, लाइक गूगल एंड अदर कंपनीज, टेक कंपनीज, वो भी एंथ्रोपिक को अपने काम करने के लिए उन्होंने उनके साथ टाई अप किए, नॉट चैट जीपीटी, नॉट द अदर कंपनीज, बट एंथ्रोपिक, क्योंकि प्रोटेक्शन इज दी बेस्ट की। जी हाँ, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड रखता है आपके डाटा को, और यही चीज थी जो एंथ्रोपिक को बहुत ही ज्यादा खास बनाती थी, क्लाउड को बहुत ज्यादा खास बनाती थी। अब यहां पर उनका फेबल 5 आ गया है, क्लाउड फेबल 5, आई हैव टू से कि डेफिनेटली कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है, और जिस हिसाब से उन्होंने इसे बिल्डअप किया है, जैसे पहले उन्होंने कहा कि हम इसे लॉन्च नहीं कर रहे थे बिकॉज इट वॉज वे टू पावरफुल, तो अब लोगों में क्यूरियोसिटी हो गई है बहुत ज्यादा कि ओके व्हाई इट वॉज दैट पावरफुल, और अब लोग ट्राई करेंगे कि वाह कंपनी ने कहा क्यों है कि इतना ज्यादा पावरफुल है। सो या क्लाउड का फेबल 5 जो है वो आ चुका है, और क्या आपने इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की या नहीं, जरूर मुझे बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: गेट रेडी ब्रिस्बेन आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और डिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
4: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
5: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
4: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
5: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
4: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
6: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
7: जो दोस्तों, और इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और दोस्तों, यहां पर अल्फा का टीजर ड्रॉप कर दिया गया है। जी हां, आपने सही सुना। अल्फा क्या है? वेल, अल्फा एक बॉलीवुड मूवी है जिसमें आपको शर्वरी बाग, आलिया भट्ट और बॉबी देओल नजर आने वाले हैं। वेल, इट्स नॉट अ रोम कॉम मूवी, इट्स नॉट फॉर द सॉफ्ट हार्टेड पीपल, इट्स फॉर द पीपल जो कि एकदम खतरनाक एक्शन देखना पसंद करते हैं, मतलब बाजू तोड़ और कमर तोड़ मेहनत देखना पसंद करते हैं। आप लोग बोलोगे कि बाजू तोड़ कमर तोड़, अरे जब आप देखोगे ना इसका टीजर तो आपको समझ आ जाएगा। जो ट्रेनिंग आलिया भट्ट ले रही है, जिस मिशन के लिए वो तैयार हो रही है, उप्स, क्या मैंने स्पॉइल कर दिया कुछ? नहीं, मैंने कुछ भी स्पॉइल नहीं किया। आपको टीजर देखने की जरूरत है। और आपको आलिया भट्ट एक्शन में अगर अच्छी लगती है, मैंने से एक्शन आई मीन फाइटिंग एंड लॉट्स ऑफ फाइटिंग, तो आपको ये अच्छा लगने वाला है। इट इज अ काइंड ऑफ स्पाई सिचुएशन. और बॉबी देओल इसमें आलिया भट्ट के पिता का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जिन्होंने उन्हें आलिया भट्ट को प्रिपेयर किया है मिशंस के लिए. क्यों? क्योंकि वो इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स को तैयार कर रहे हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा तेज, सबसे ज्यादा किलर सोल्जर्स. जी हाँ, सो यही है कहानी. और बॉलीवुड में अभी से शोर जो है वो शुरू हो गया है. कहा जा रहा है कि आलिया भट्ट जो है वो फिर से एकदम किल करने के लिए तैयार है सभी चीजों को. एंड व्हेन आई से सभी चीजों को, मतलब ऑल द अदर मूवीज, क्योंकि वो इतने दमदार तरीके से आ रही है. एंड वी कांट वेट. एंड एक्चुअली आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर इट, क्योंकि जब भी आलिया भट्ट एक्शन करती हैं हमें अच्छा लगता है. सो इसमें आलिया भट्ट के अलावा शर्वरी बाग भी है, और वो किस कैरेक्टर में, वेल वो आप टीजर देखिए और फिर अगर आपको नजर आता है तो हमें बताइएगा. और ट्रेलर जब आएगा तो आएगा, पर पहले टीजर देखकर हमें अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, क्योंकि अल्फा के लिए तो मैं भी एक्साइटेड फील कर रही हूँ. आप लोग बोलोगे कि अच्छा नहीं भैया, इतना जबरदस्त ट्रेलर है क्या? वेल आप देखिए तो सही, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा.

जी दोस्तों, वही फीफा वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और अगर मैं आपको बताऊं कि फीफा वर्ल्ड कप में आपको जबरदस्त खिलाड़ी तो वो पिच पर दिखने ही वाले हैं, ग्राउंड पर दिखने ही वाले हैं, और आपको अपने गेम से मोहित तो वो करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर फीफा जो रेवेन्यू जनरेट करने वाला है, उसके बाद आपको लगेगा वो वॉट, मतलब गेम वेम सही है लेकिन इतना बड़ा रेवेन्यू, इतना ज्यादा रेवेन्यू। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट जस्ट 1, 2, 3, 4, 5 बट 14 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, सो फीफा इस बार अपने लिए 14 बिलियन डॉलर रेवेन्यू जनरेट करने वाला है। ऑफकोर्स इसके पीछे रीजन है एंडोर्समेंट्स, और ऑफकोर्स इसके पीछे रीजन है हाई प्राइस फॉर टिकट्स, ऑफकोर्स इसके पीछे रीजन है जो इन्होंने स्ट्रीमिंग साइट्स के लिए और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स से पैसे लिए। सो ये सारी चीजें मिलाकर ऐसा कहा जा रहा है कि 14 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू फीफा जनरेट करने वाला है। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, नो वंडर, अब 14 बिलियन जो है डॉलर रेवेन्यू जनरेट करना है तो चिंदी चोरी तो करनी पड़ेगी। वेल, बात तो सही है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे फीफा वर्ल्ड कप की जो ऑफिशियल हैंडल है वहां पे टिकट्स बुक करते हुए कुछ 60 लोगों को फ्री में टिकट्स मिल गई थी। जी हाँ, वो ग्लिच था जिसकी वजह से उनका प्राइस जो है टिकट का एकदम से जीरो हो जाता है और उनको फ्री में टिकट्स मिल जाती है। लेकिन वो 60 टिकट फीफा फालतू में नहीं जाने देता है। जी हाँ, उन लोगों को कॉन्टेक्ट किया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि ये टिकट्स फ्री में नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आपको इसके पैसे पे करने पड़ेंगे, नहीं तो आपकी टिकट कुछ दिनों में रद्द हो जाएगी, यू वोंट बी एबल टू वॉच इट। जी हाँ, जो लग रहा है आपको ऐसा कोई फ्री में टिकट नहीं दे रहे हैं हम लोग, हम फ्री बाजी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम सांता क्लॉज नहीं है, हम लोग यहाँ पे पैसे कमाने वाले हैं अच्छे से। सो टिकट का प्राइस दो नहीं तो कल्टी कर लो। जी हाँ, दैट्स व्हाट फीफा सेड। ऑफ कोर्स मैंने थोड़ा सा ड्रामेटिक तरीके से बोला, बट द थिंग इज कि 60 टिकट्स, चलिए 60 भी छोड़िए, 10 तो दे देते हैं एटलीस्ट फ्री में, पर उन्होंने वो भी नहीं दिया। सो यहाँ पर ये चिंदी चोरी तो करनी पड़ेगी, मतलब 14 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करना इज नॉट अ इजी टास्क। सो या कॉन्ग्रेचुलेशन टू फीफा, क्योंकि अमीरियत आपको नसीब होने वाली है जल्द ही, लेकिन लोग जो है जो हेफ्टी सम ऑफ मनी पे कर रहे हैं उन टिकट्स के लिए, या कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। या बिल्कुल, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही जबरदस्त है।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
10: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
9: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
10: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
9: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
11: Priya, next month mama ka birthday hai. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे. ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
12: अच्छा, वो क्या?
11: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
12: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
11: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक और फाइनल्स संडे 14 जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। सो दोस्तों, समवन ऑन द इंटरनेट सेड दैट बेस्ट डे टू वर्क फ्रॉम ऑफिस इज व्हेन योर मैनेजर इज वर्किंग फ्रॉम होम। जी हाँ, अगर आपने नहीं सुना ध्यान से तो आप सुन लीजिए। सो समवन ऑन द इंटरनेट सेड दैट बेस्ट डे टू वर्क फ्रॉम ऑफिस इज व्हेन योर मैनेजर इज वर्किंग फ्रॉम होम। भाई बात में दम तो है। अगर मैनेजर घर पे होगा तो आपको ऑफिस जाना चाहिए, अगर मैनेजर ऑफिस में है तो आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, क्योंकि मैनेजर अगर साथ में बैठा होगा या पास में रहेगा तो वो इतनी चिक चिक चिक चिक पिक पिक पिक पिक करेगा कि आप बोलते हो। सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस पता है आपको मैनेजर्स ही देते हैं, और ये तो मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, कॉर्पोरेट जगत का सबसे बड़ी सच्चाई है। सो जिसने भी ये सोचा है कि बेस्ट डे टू वर्क फ्रॉम ऑफिस इज व्हेन योर मैनेजर इज वर्किंग फ्रॉम होम, आई थिंक इट्स वेरी वेरी ट्रू, और ऐसा ही करना चाहिए। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा। और अगर गलती से आप में से कोई मैनेजर है मेरे लिसनर्स में से तो थोड़ी माफी दे दीजिएगा, क्योंकि मैंने नहीं गाया, ये इंटरनेट पे गाया और किसी और ने गाया, मैं तो बस आप तक पहुंचा रही हूँ इस बात को। ओके, आपकी आर्जनीविया ने बिल्कुल नहीं गाया, आपकी आर्जनीविया बिल्कुल आपके साथ है। जी हां, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं खबरों की, न्यूज की, क्या हो रहा है दुनिया में, पॉलिटिकल वर्ल्ड में और वॉर फ्रंट पे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर के साथ जो कि है ईरान की। जी हाँ, ईरान ने कहा इस बार युद्ध केवल इसी इलाके तक सीमित नहीं रहेगा। जी हाँ, सबसे पहली खबर जो है वो ईरान से ही है। ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि हम हारने वालों से लड़ने से नहीं डरते। जी हाँ, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ट्रंप के बताए आंकड़ों के मुकाबले मारे गए या घायल हुए अमेरिकियों की संख्या पहले ही कहीं ज्यादा है और ये संख्या और बढ़ेगी। उन्होंने लिखा इस बार ये युद्ध सिर्फ इसी इलाके तक सीमित नहीं रहेगा, देखते हैं क्या होता है। इससे पहले अमेरिका ने ईरान में कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। ईरान में कई जगहों पर इन हमलों की आवाज सुनी गई है। हालांकि हमलों से कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने कहा है कि बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना ताकत नहीं हताशा का प्रदर्शन है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने की घोषणा की है और कहा है यहां से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी पोत को निशाना बनाने की चेतावनी भी दी है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा भी किया है।
1: Shut up, Patel!

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। OMSOG, caring with dignity.
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optus.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ ईरान ने बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा किया है। जी हाँ, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अब आपको बताते हैं थोड़ा डिटेल में। बहरीन के गृह मंत्रालय ने नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने का आग्रह किया है। बहरीन के गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर एक संदेश में नागरिकों और निवासियों से शांत रहने और निकटतम सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। गुरुवार सुबह अमेरिकी हमलों के एक घंटे बाद ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसियों ने देश की सेना के हवाले से कहा कि बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। सेना के ड्रोन हमले में अमेरिका के पांचवें बेड़े के पेट्रियट सिस्टम के संचार एंटेना और रडार को निशाना बनाया गया। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी IRNA के रेवोल्यूशनरी ने रेवोल्यूशनरी गार्ड के हवाले से कहा कि अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में उसने बहरीन के में एक हवाई अड्डे और कुवैत में दो अन्य ठिकानों सहित 18 अहम ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे पहले अमेरिका ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इसके जवाब में ईरान ने कहा कि वो अमेरिकी हमलों के आगे नहीं झुकेगा और इसका जवाब भी वो देगा।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और अब जरा भारत की सत्ता की बात कर लेते हैं, भारत की खबरों की बात कर लेते हैं। वहां पर एक नई पार्टी जो है वो अभी लाइमलाइट में आई है कुछ दिन पहले, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कॉकरोच जनता पार्टी। वेल ऑफकोर्स इसके बनने के पीछे की कहानी भी थोड़ी फनी है, क्योंकि एक जज ने कह दिया एक वकील को कि आप कोई अच्छे मुद्दे लेकर आना चाहते हैं तो आइए, नहीं तो ये आजू बाजू और ये फालतू के मुद्दे मत लेकर आइए। और ये जो हमारी जो अनएम्प्लॉयड जो जनता है वो कॉकरोचेस की तरह बिहेव करती है। जी हाँ, बस ये सुनने की देर थी, उसके बाद जो है वो लोगों ने कॉकरोच का नाम, कॉकरोच बुलाए जाने को अपने दिल पर ले लिया, और उसके बाद जो है एक कॉकरोच जनता पार्टी का जो है वो जन्म हुआ। जी हाँ, ऐसा ही हुआ। और उसके बाद जो है, फिर उसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें हो रही है। अब उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, फाइनली जो है वो उन्होंने रियल में गेम में उतरने की जो है वो सोच ली है। इससे पहले जो है वो इकलौती ऐसी पार्टी थी जिसके फॉलोअर्स जो है एक दिन में, दो दिन में मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस बढ़ गए थे। जी हाँ, सो यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी जो है अब अच्छे से लाइमलाइट में आ रही है, और ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे ये पॉलिटिक्स में भी आ जाएगी। आप लोग बोलोगे कि ये थोड़ा सुना सुना से क्यों लग रहा है। वेल, अगर आपने आम आदमी पार्टी के जन्म की गाथा सुनी होगी तो उनको आपको लगेगा कि हाँ, ये तो कुछ वैसा सा ही लग रहा है। वेल या बट ये कॉकरोच जनता पार्टी जो शुरू कर रही है, क्या उसमें आगे कितनी कामयाब होगी और क्या ऐसे ही इरादे रहने वाले हैं इनके भी या नहीं, या फिर ये प्रोपेगेंडा है? वेल, इट्स अ केस जो कि आपको खुद डिसाइड करना है। सो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि आज पुणे में प्रदर्शन के दौरान सीजेपी अपना एग्जाम मैनिफेस्टो जारी करेगी। अभिजीत दीपके ने अपनी पार्टी के एक एक्स पोस्ट को शेयर किया है जिसमें कहा गया कि ये घोषणा पत्र देश में परीक्षाओं से जुड़े संकट के समाधान पर होगा। इस प्रदर्शन के दौरान सीजेपी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराएगी। कॉकरोच जनता पार्टी के 11 जून यानी आज गुरुवार को सावित्री बाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी में एक प्रदर्शन करने जा रही है। सीजेपी का कहना है कि यह प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था में ज्यादा जवाबदेही की मांग को लेकर चलाए जा रहे देशव्यापी अभियान का अगला चरण होगा। इससे पहले बीते शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए ये सीजेपी नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 में पेपर लीक के साथ ही परीक्षा और भर्ती से जुड़े अन्य मुद्दों के खिलाफ भी अपनी आवाज उठाएगी। पर बात में दम तो है, क्योंकि अगर आपने इसके बारे में कुछ भी सुना होगा तो भारत में एक नया कारनामा हुआ है। जी हाँ, ये कारनामा कुछ ऐसा है कि पेपर लीक हो गया। जी हाँ, जो मेडिकल स्टूडेंट्स और मेडिकल फील्ड में एंट्री का सबसे बड़ा पेपर नीट जो है वो होने से पहले ही लीक हो गया, और उसके बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पढ़ाई की थी, जी जान से पढ़ाई की थी, कुछ की हालत इतनी ज्यादा खराब होगी, डिप्रेशन में वो चले गए और कुछ तो मर भी गए। जी हाँ, आपने सही सुना। सो आप ये देखिए कि एक ऐसी कंट्री जो कि अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम के पेपर्स को नहीं बचा पा रही है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि इनकॉम्पिटेंसी कहाँ है और किसकी वजह से है, ये लोग खुद डिसाइड करेंगे, बट द थिंग इज कि एक परीक्षा यानी कि कॉम्पिटिशन एग्जाम जो कि लिटरली भविष्य तय करता है बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बच्चों का, मेडिकल फील्ड में, कैसे कोई इसको लीक कर सकता है और कैसे इतनी लापरवाही गवर्नमेंट कर सकती है? सो यहाँ पर ये कहना कि इस्तीफा चाहिए शिक्षा मंत्री का, आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, मुझे इतना पता है कि मेरे लिसनर्स का ह्यूमर जो है वो सर्वोपरि है। सो अभी मेरी बात हो रही थी, मैं एक फरमाइशी गीत जो है वो प्ले करने वाली हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कैसे भारत की सत्ता में भी एक बड़ी दिलचस्प घटना घटी। एक और नई पार्टी जो है वो बनने की कगार पे आ गई और उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। ऑफकोर्स कॉकरोच जनता पार्टी नाम ही बहुत ही अजीबो गरीब है, लेकिन इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया। अब यहां पर उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे पेपर लीक हो गया, मतलब मेडिकल फील्ड में एंट्री का जो पेपर होता है नीट, वो लीक हो गया और उसकी वजह से वो पेपर जो है वो रद्द हो गया, और फिर उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने रात दिन इसके लिए मेहनत की थी वो डिप्रेशन में चले गए आधे से ज्यादा। जी हाँ, सो यहाँ पर मेरे लिसनर मुझसे कहते हैं, जी हाँ, जब वो फरमाइश कर रहे थे, वो कहते हैं कि बात में क्या कहूं, मतलब दूध लीक हो गया, ठीक है, पेट्रोल लीक हो गया, डीजल लीक हो गया, ये तो सुना था, मतलब यहाँ पर पेपर लीक हो रहे हैं। एंड आई वाज लाइक कि बात में तो दम है, मतलब लीक होने वाली चीजें लीक हो तब तो बात है ना, मतलब पेपर लीक तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर पेपर लीक हो रहे हैं। जी हाँ, और यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, चलो भारत में हो रहे हैं, इंडिया में हो रहे हैं, मतलब थिंग इज की कितनी ज्यादा गलत बात है। और मेरे लिसनर्स जो है वो बात एकदम पते की करते हैं, सो मुझे बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच जस्सी जी, हमेशा की तरह गजब की बात करने के लिए, और बात में दम है भाई। मतलब चलिए, दूध के पैकेट से दूध लीक हो गया, गाड़ी से पेट्रोल लीक हो गया, ये सब तो सुनने को मिलता है, लेकिन पेपर लीक हो गया भाई, ये तो नहीं होना चाहिए। जी हाँ, सो थैंक यू सो मच। जो गाना जस्सी जी ने किया है फरमाइश, वो भी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि वो भी ये सिचुएशन से रिलेटेड है कुछ। उसमें है एक तारा बोले तुन तुन तुन, जी हाँ, और ये है मनोज कुमार और नूतन की मूवी का गाना, इसे महेंद्र कपूर ने गाया है, और ये कुछ ऐसा ही व्याख्यान कर रहा है यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है भारत में, इंडिया में। सो या इसी के लिए थैंक यू सो मच जस्सी जी, हमेशा की तरह जबरदस्त फरमाइशों के लिए, और एकदम देखो थीम वाली फरमाइशें करने के लिए। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए, और ये रहा आपका ये गाना।

0: तुम मचाते रहे तो फिर उसके बाद।
1: अरे अरे भाई, अहिंसा परमो धर्म है, हाथ मत उठा, हमें कानून की हद में रहना है, इंसानियत की सीमा पार नहीं करनी।
2: देश द्रोहियों की हम चमड़ी उधेड़ देंगे।
1: ये शब्द तुम मत बोलो।
2: तो फिर कौन बोलेगा?
1: वो बोले।

मजाकिया किस्सा है, जहां पर एक बंदा कंपनी में आया और उसने कंपनी के सारे इंटरव्यूज क्लियर किए. जी हाँ, जॉब के लिए आया बेसिकली. उसने इंटरव्यू क्लियर कर लिए, उसने जॉब को ज्वाइन भी कर लिया और फिर उसके बाद उसे कंपनी ने एक लैपटॉप असाइन किया. जी हाँ, वो बंदा उस लैपटॉप को लेकर घर गया और कभी वापस ही नहीं आया. जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि नीमेश शर्मा ये कहा हुआ. वेल ऑफ कोर्स, ऐसे विचित्र घटनाएं सिर्फ और सिर्फ भारत में हो सकती है, इंडिया में हो सकती है, एंड दैट्स वेयर इट हैपेंड. सो कंपनी ने अपने लिए एक बंदा हायर किया, उनको लगा कि हमने बहुत ही अच्छा बंदा हायर किया है. उसको उन्होंने लैपटॉप दिया और वो बंदा लैपटॉप को लेके ऐसा रफू चक्कर हुआ कि ना बंदा देखने को मिला ना लैपटॉप. अच्छा चलो ठीक है, जब उसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की गई तो नंबर जो है वो एकदम मिलने से मना कर रहा था, मतलब मिल ही नहीं रहा था. जब उसका एड्रेस जो कि उसने दिया था, जब एड्रेस जाके देखा कि ओके ठीक है जाकर देखते हैं, तो वहां पर खाली प्लॉट था, घर भी नहीं था. जी हाँ, मतलब जहां का एड्रेस दिया हुआ था वहां पे खाली प्लॉट था, घर भी नहीं था. और फिर कंपनी ने उसके लिंक्डइन पर फिर से जाके देखा तो उसने अपना लिंक्डइन भी डिलीट कर दिया था. सो बेसिकली उस बंदे ने उस लैपटॉप को चुराने के लिए एक पूरा का पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है और डिजिटल आइडेंटिटी जो है वो तैयार की, एक एड्रेस आइडेंटिटी जो है वो तैयार की, एक फोन नंबर जो है वो लिया और उसके बाद ये सब कुछ जो है जब देखा गया तो सब कुछ गड़बड़. मतलब प्लॉट जो था वो घर की जगह प्लॉट था. जी हाँ, वो एड्रेस जो है वहां पे घर भी नहीं था, प्लॉट था, नंबर मिल नहीं रहा था. जी हाँ, लिंक्डइन प्रोफाइल भी अब तो मिल नहीं रही थी, वो भी डिलीट कर दी थी. तो वो बंदा गया तो गया कहाँ. जी हाँ, अब वो कंपनी भी सोच रही होगी कि ये तो हमने क्या ही विचित्र घटना कर ली. वेल ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट हैपेंस. ये तभी होता है, मतलब ऐसी चीजें आपको तब देखने को मिलती हैं जब आपकी हायरिंग हो जाती है और एचआर आपको प्रॉमिसेस करने के बाद जो है वो बाद में गायब हो जाती है. ये जो हुआ यहाँ पे, लैपटॉप लेके बंदा गायब हो गया. वैसे नॉर्मली जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में एचआर जो है वो हायरिंग के टाइम पे आपको बड़े बड़े प्रॉमिसेस करती है और फिर वो भी ऐसे ही इसी बंदे की तरह गायब हो जाती है, फिर वो भी देखने को नहीं मिलती है. सो कहने का मतलब ये है कि क्या बात है, मतलब इतनी क्रिएटिविटी अपने काम में लगा लेता भाई तो क्या हो जाता. मतलब नौकरी मिल गई थी तो नौकरी कर लेता, लैपटॉप चुराने की क्या जरूरत थी. वेल, अभी तक भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा किया उस बंदे ने, बट ये सच में हुआ है. जी हाँ, ये कोई मेड अप स्टोरी नहीं है, सच में हुआ है. ये लैपटॉप को चुराने के लिए एकदम पूरा अपनी पहचान बना दी और वो सब कुछ फर्जी निकला. क्या बात है. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही जबरदस्त है.

जी दोस्तों, और इसी के साथ आपको एक और विचित्र घटना के बारे में बताते हैं जो कि काफी वायरल हो रहा है, और ये भी थोड़ी कॉर्पोरेट जगत का जो है वो मजाक

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड.
2: बिल्कुल. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए. ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए. इंडिया नंबर 8448381360. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.
3: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindersingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड की तरफ जाने का. एंड इससे ज्यादा खुशी मुझे कभी भी नहीं होती. जब मैं सेगमेंट की शुरुआत करने वाली होती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि वाह वाह क्या बात है. ये मौसम, ये गाने, ये बातें, यही तो चाहिए, यही तो चाहिए, राइट? मतलब वो पुराने गाने और ये बारिश, इससे ज्यादा अच्छा और क्या ही कॉम्बिनेशन हो सकता है. सो अगेन, जो मौसम कह रहा है वैसी ही बातें हम करने वाले हैं, क्योंकि उस वक्त के राइटर्स जो है वो इन्हीं चीजों पर तो लिखा करते थे, खूबसूरती पर लिखा करते थे. आजकल के राइटर्स की तरह थोड़ी कुछ भी लिखते हैं. सो या यहां पर हम ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं. पुराने गाने आपके लिए प्ले करेंगे, पुरानी बातें आपसे करेंगे, किससे भी आपको सुनाएंगे और साथ में वो तराने भी गाएंगे. सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? जल्दी से आप अपनी फरमाइशों के साथ आ जाइए. बस शर्त वही है कि गाना होना चाहिए पुराना, नहीं तो कोई भी चलेगा नहीं आपका बहाना. क्योंकि बात तो सही है भाई, पुराना ही होना चाहिए गाना. तो इसी के साथ आ जाइए. यहाँ पर जो गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसका नाम है ठंडी हवा काली घटा. आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, ये तो गाना भी मौसम से मिल रहा है. अरे वही तो मेरा इरादा था. तो सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें.

जी हाँ दोस्तों, मैंने तो कहा ही था कि मौसम जो है वो कातिलाना है, और अब जो है मेरे पास फरमाइशें आनी भी जो शुरू हो गई हैं वो भी एकदम कातिलाना है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मौसम गहरा है, बहुत ही बढ़िया सी कोई कहानी, तो आपकी हो जुबानी और कुछ हो ना कहानी, ये कैसे हो सकता है? आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा बाकी सब ठीक है बट ये अपनी शेरो शायरी बंद करो, बहुत बुरी कर रही हो। चलिए ठीक है, आप लोग बोलते हो तो मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है। थोड़ा राइमिंग वाइमिंग में चली जाती हूँ, मैं निकल जाती हूँ, बट डोंट वरी, आप बोल रहे हो तो रुक जाती हूँ। तो यहाँ पर एक और फरमाइश आ चुकी है, और ये खूबसूरत सा गाना जो है वो बहुत ही खूबसूरत मूवी का है, और ये मूवी है रोटी कपड़ा और मकान। जी हाँ, रोटी कपड़ा और मकान। मैं सोचती हूँ कि क्या मजेदार से और एकदम खतरनाक से टाइटल्स जो है वो रखे जाते थे पहले की मूवीज के। शोले, रोटी कपड़ा और मकान, जंजीर, जी हाँ, और इसी के साथ, और मतलब इतने खतरनाक खतरनाक जो है वो टाइटल्स जो है वो रखे जाते थे। अब यहाँ पर रोटी कपड़ा और मकान, मतलब ये तो ऐसी चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान, ना हो इनमें से कुछ भी ना हो तो गड़बड़ हो जाती है। वेल, रोटी और कपड़ा तो थोड़ा ज्यादा ही जरूरी है क्योंकि इसके बिना तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। मकान ना हो तो रेंट पे रह की दो चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो रोटी कपड़ा और मकान का जो ये गाना है वो है हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। और ये मेरे बहुत ही खास लिसनर की तरफ से आई है फरमाइश। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ पर दूरी है, क्या मजबूरी है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट द थिंग आई नो वेरी श्योर एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इज दैट जो मौसम है वो बहुत ही खतरनाक है। सो थैंक यू सो मच इस जबरदस्ती फरमाइश के लिए। और अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है ना तो जरूर देखिएगा, मतलब क्या मैं कहूँ मनोज कुमार और जीनत अमान के लिए। जीनत अमान इज लुकिंग सो हॉट, एंड द थिंग इज कि ऐसे रोल्स के साथ ऐसी फिल्मों में सिर्फ वही जस्टिस कर सकती थी। मतलब वो बोल्ड थी लेकिन उनकी जो बोल्डनेस थी वो इतने अच्छे से सर्व होती थी स्क्रीन पर। I mean, no other actress could do it. Only Zeenat Aman could do it and pull it off like a pro. यहाँ पर सुनते हैं इस गाने को। Thank you so much इस फरमाइश के लिए, और ये रहा आपका गाना।

जी हाँ दोस्तों, और अब मैं आपको किस्सा सुनाने वाली हूँ एक ऐसे गाने का जिस गाने के लिए किसी और की डिमांड की गई थी। जी हाँ, लेकिन इसे गाया गया किशोरदा के द्वारा। अब ये वो वक्त था जब 1965 में महमूद साहब अपने गाने जो है वो नॉर्मली रफ़ी साहब या फिर मन्ना डे से गवाया करते थे, लेकिन यहाँ पर इस पिक्चर में जो कि गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, मैं पिक्चर का नाम नहीं आपको बताऊंगी बट गाने का नाम चलो मैं आपको बता देती हूँ। गाने का नाम है जागो सोने वालों सुनो मेरी कहानी। इस पिक्चर के इस गाने के लिए चूज किया गया किशोरदा को। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर महमूद साहब तो यही चाहते थे या तो मन्ना डे से गवाया जाए या तो रफ़ी साहब से गवाया जाए, क्योंकि हमेशा वो उन्हीं से ही अपने गाने जो है वो गवाया करते थे। लेकिन यही बात, ये खबर जब आडी बर्मन यानी कि पंचम दा के कानों में पड़ती है तो वो महमूद साहब से मिलने जाते हैं और वो कहते हैं कि महमूद साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये गाना जो है वो बहुत ही मज़ेदार है और इसमें अगर आप चाहते हो कोई अच्छे से जस्टिस करे तो वो सिर्फ और सिर्फ किशोर दा हो सकते हैं। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ किशोर दा ही इसके साथ अच्छे से जस्टिस कर पाएंगे, मतलब जैसा ये गाना है किशोर दा इसे बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर महमूद साहब उस वक्त तक भी डाइसी थे, वो नहीं चाह रहे थे कि वो किशोर दा से अपना गाना गंवाए, लेकिन आडी बर्मन साहब अटक गए। जी हाँ, वो कहते हैं कि किशोर दा से ही हमें ये गंवाना चाहिए। फिर क्या था, महमूद साहब ने कहा चलो ठीक है, अगर तुम इतना ज्यादा श्योर हो, उन्होंने पंचम दा को कहा अगर तुम इतना ज्यादा श्योर हो तो ठीक है हम करवा लेते हैं। और फिर उसके बाद किशोर दा ने प्रूव कर दिया कि वाई इज ही अ लेजेंड। जी हाँ, उन्होंने उस गाने को गाया पर इतनी ज्यादा जबरदस्त तरीके से गाया कि महमूद साहब उनके फैन बन गए। जो हमेशा थोड़े इंक्लाइंड रहते थे रफी साहब और मन्ना डे की तरफ, अब वो किशोर दा के फैन बन गए। कौन सा गाना है मैंने आपको बता दिया, कौन सी मूवी है ये आपको गेस करना है, गाना आप सुन सकते हैं।

दोस्तों, मैंने आपको कहा था ना कि किशोर दा ने इस गाने को ऐसा गा दिया कि जो मैंने देखी है, जो आज के स्टार्स में मुझे इतने अच्छे से नहीं दिखती है, लेकिन पहले के जमाने के जो बड़े बड़े स्टार्स थे उनमें ये चीज दिखती थी. मतलब वो जो ग्राउंडेडनेस थी, मतलब वो इतने बड़े सेलिब्रिटीज होने के बाद भी इतने ग्राउंडेड होते थे. आई एम नॉट सेइंग एवरीवन वाज लाइक दैट, बट मोस्ट ऑफ देम. सबसे बड़ा एग्जांपल दिलीप साहब है. जी हाँ, जब भी दिलीप साहब की बात होती है तो एक चीज के बारे में जरूर बात की जाती है, वो है कि एक्टिंग के अलावा वो जबरदस्त स्टार के पीछे वो जो खूबसूरत शख्सियत वाला जो इंसान. जी हाँ, एक बार की बात है, एक अवार्ड शो में शाहरुख खान ने दिलीप साहब से पूछा था कि दिलीप साहब, आप सबकी इतनी ज्यादा तारीफ करते हैं, आपको लगता है कि सब कितने अच्छे स्टार्स हैं, पर आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं, यानी कि शाहरुख खान, अमित साहब, यानी कि अमिताभ बच्चन, सब ये मानते हैं कि आपसे बड़ा स्टार तो हुआ ही नहीं है. तो दिलीप साहब उस वक्त शाहरुख की ये बात सुनकर सामने से कहते हैं कि शाहरुख, मुझे नहीं पता तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही अच्छा काम करते हो. मतलब तुम अपनी बात करो. जी हाँ, शाहरुख, तुम इतना अच्छा काम करते हो, अमित इतना अच्छा काम करता है, सनी, संजय सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं. मैं जब भी तुमको टीवी पे देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वाह, मेरे बच्चे कितना अच्छा काम कर रहे हैं. और तुम्हें किसने कह दिया कि मुझसे अच्छा काम नहीं कर रहे? मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे अच्छा काम कर रहे हो. अब आप ये सोचिए कि इतना बड़ा सुपरस्टार जिसकी तारीफ के कसीदे पढ़ने से ना सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन नहीं रुकते थे, धर्मेंद्र नहीं रुकते थे, मतलब इस दुनिया में तो नहीं, पर इस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो दिलीप साहब की तारीफ नहीं करता था. हाँ, देयर वर पीपल जो थोड़े ग्राउंडेड नहीं थे, जो थोड़े से एटीट्यूड वाले भी थे, लाइक आई मीन राजकुमार साहब, आई मीन ऑफकोर्स ही वॉज ऑल्सो लाइक दैट, है ना. देर आर सम अदर हीरोज ऑल्सो जिनमें थी थोड़ी सी एरोगेंस, और आप इतने बड़े सेलिब्रिटी होते हो तो एरोगेंस आने में इतना भी कोई वो नहीं है. बट स्टिल, इतनी बड़े स्टारडम के बाद भी इतनी ग्राउंडेडनेस होना इज समथिंग नॉट एवरी वन कैन अचीव. एंड दिलीप साहब ने जब ये कहा तो शाहरुख खान के मुंह में शब्द नहीं बचे. ही वॉज लाइक कि दिलीप साहब, आपसे बड़ा इंसान और बड़े दिल वाला इंसान कोई नहीं हो सकता. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जा रहे हैं हम, वापस आएंगे कल यानी कि फ्राइडे को। और फ्राइडे को सेलिब्रेट करने के तो हमारे पास बहुत सारे रीजंस होते हैं, सो ऑफ कोर्स आई एम गोना टॉक अबाउट दैट टुमारो। बट अभी के लिए हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मतलब हेल्दी हमेशा ही रहिए, बट हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और यमी सा कुछ खाते रहिए। आई मीन इतनी अच्छी बारिश हो रही है, कुछ अच्छे पकौड़े शकौड़े खाइए, मतलब हाँ ठीक है। आई नो पकौड़ों का टाइम नहीं है, अब तो डिनर का टाइम है, सो डिनर कीजिए या डिनर में पकौड़े खा लीजिए, आई मीन दैट्स अप टू यू, बट इंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए और मुस्कुराते रहिए। दैट्स ऑल आई वांट टू से, अच्छी अच्छी चीजें आप सबके लिए। एंड ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से बहुत ही जबरदस्त, किशोर दा का क्लासिक सॉन्ग।

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे. प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896. दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.

0: जा रही हूँ।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुँचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट। आज का

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिसबेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिसबेन की कंपनी इंटेलिजेंट डिजाइन को मिला सेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। जी हां, ब्रिसबेन की मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंटेली डिजाइन को एक बहुत बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट हनुवा डिफेंस ऑस्ट्रेलिया ने दिया है। इसी के साथ लिपोइडमा अवेयरनेस मंथ, आज रात पर्पल रोशनी से नहा उठेगा ब्रिसबेन का आइकॉनिक स्टोरी ब्रिज। अगर आज रात आप ब्रिसबेन की सड़कों पर निकलेंगे तो आपको शहर का नजारा बदला हुआ दिखेगा। आज 11 जून को लिपोइडमा अवेयरनेस मंथ के तहत ब्रिसबेन का मशहूर स्टोरी ब्रिज और किंग जॉर्ज स्क्वायर पूरी तरह से पर्पल यानी बैंगनी रंग की रोशनी से जगमगाएगा। वहीं कूपर्स प्लेन्स में डकैती के मामले में दो युवाओं पर मामला दर्ज, आज ब्रिसबेन कोर्ट में पेशी। ब्रिसबेन के कूपर्स प्लेन्स इलाके के से क्राइम की एक खबर है। साउथ ब्रिसबेन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने बेबिज स्ट्रीट पर हुए एक हिंसक डकैती के मामले में एक 16 साल के नाबालिग और एक 18 साल के युवक को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ट्रांस अर्बन का एक बड़ा ऐलान, टोल रोड का इस्तेमाल करने वाले को मिलेगा पेट्रोल पर भारी डिस्काउंट। जी हां, ब्रिसबेन और क्वींसलैंड के ड्राइवरों के लिए एक बहुत ही शानदार और राहत भरी खबर है। अगर आप 15 जून से 15 जुलाई के बीच ऑस्ट्रेलिया की किसी भी टोल रोड पर 10 या उससे ज्यादा बार सफर करते हैं तो आपको 7-11 पेट्रोल पंपों पर प्रति लीटर 26 सेंट का बम्पर डिस्काउंट मिलेगा। इसी के साथ ब्रिसबेन के पूर्व विदेश मंत्री गैरेथ इवांस ने ओक्स रक्षा समझौते को बताया बड़ा भ्रम। ऑस्ट्रेलिया की राजनीति और रक्षा नीति को लेकर ब्रिसबेन और पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई है। पूर्व लेबर विदेश मंत्री गैरेथ इवांस ने एक स्वतंत्र सार्वजनिक जांच समिति के सामने बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका और यूके के साथ किया गया $368 अरब का ओक्स परमाणु पनडुब्बी समझौता ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे खराब फैसला है। वहीं हेल्थ मिनिस्टर मार्क बटलर का ऐलान, गठिया के इलाज और रिसर्च के लिए रिकॉर्ड फंडिंग, ब्रिसबेन और ऑस्ट्रेलिया के करोड़ों लोगों को राहत देने वाली एक मेडिकल खबर। फेडरल हेल्थ मिनिस्टर मार्क बटलर ने आज सुबह घोषणा की है कि सरकार देश में गठिया यानी अर्थराइटिस और हड्डियों से जुड़ी बीमारियों के रिसर्च के लिए $100 मिलियन का रिकॉर्ड फंडिंग जारी करने जा रही है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने बनाया देश में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड। वहीं ओमान के पास अमेरिकी हवाई हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत, एक बहुत दुखद खबर आ रही है। गल्फ ऑफ ओमान में एक तेल टैंकर पर अमेरिकी सेना के हमले के बाद लापता हुए 3 भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। वहीं मणिपुर के कांगो पोखपी में अगवा किए गए 6 नागा पुरुषों के शव बरामद। मणिपुर से एक गंभीर खबर है, जहां पिछले महीने 13 मई से लापता 6 नागा पुरुषों के शव कांगो पोखपी जिले से बरामद किए गए हैं। वहीं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का नया प्रस्ताव, एक कंपनी को नहीं मिलेंगे सारे एयरपोर्ट्स। नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि किसी भी एक बोली लगाने वाली कंपनी को 2 या 3 से ज्यादा एयरपोर्ट के बंडल नहीं दिए जाएंगे। वहीं एम्स ने क्वालिटी खराब होने के कारण सिरिंज के 2 बैच बाजार से वापस मंगवाए। स्वास्थ्य जगत से जुड़ी एक जरूरी खबर, दिल्ली एम्स ने क्वालिटी को लेकर आ रही शिकायतों के बाद एक ही महीने के भीतर 10 ml सिरिंज के 2 अलग बैच को बाजार से वापस लिया। इसी के साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले अमेरिका और ईरान के बीच लगातार दूसरे दिन भारी हवाई हमले, मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट। रुक करते हैं दुनिया का और सबसे बड़ी खबर है, अमेरिका और ईरान के बीच लगातार दूसरे दिन भी भारी हवाई हमले जारी रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर तेहरान तुरंत शांति समझौते पर राजी नहीं हुआ तो हमले और तेज होंगे। वहीं ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद करने का किया दावा। इसी युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी इंटरनेशनल खबर, ईरान के सैन्य कमान ने ऐलान किया है कि उसने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सभी प्रकार के जहाजों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। वहीं बहरीन में गिराए गए ईरानी ड्रोन्स का मलबा, एक बच्ची घायल। ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलों और ड्रोन्स के कारण पड़ोसी देश भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। बहरीन के आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि उनकी सेना द्वारा हवा में ही नष्ट किए गए ईरानी ड्रोन्स का मलबा राजधानी मनामा और हमद टाउन के रिहायशी इलाकों में गिरा है। वहीं कुवैत ने सुरक्षा के लिहाज से अपना एयर स्पेस बंद किया, उड़ानें डायवर्ट की। इसी के साथ कनाडा सरकार का बड़ा कदम, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर बैन की तैयारी। जी हाँ, अब ऑस्ट्रेलिया के बाद कनाडा भी ये कर रहा है। टेक और सोशल मीडिया की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर है, कनाडा सरकार बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक ऐतिहासिक कानून लाने जा रही है, जहां पे वो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से पूरी तरह पर पाबंदी लगाएगी। वहीं इजरायली ड्रोन हमले में लबनान के सिडन शहर में 2 लोगों की मौत। इधर इसराइल और हिजबुल्ला के बीच भी संघर्ष लगातार हिंसक होता जा रहा है। दक्षिण लबनान के सिडन शहर में आज सुबह एक इजरायली ड्रोन ने एक कार को निशाना बनाया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले आज रात में शुरू हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2026 ओपनिंग मैच में मेक्सिको और साउथ अफ्रीका आमने सामने। स्पोर्ट्स के दीवानों, आपका लंबा इंतजार खत्म हुआ। इतिहास का सबसे बड़ा फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप रात से शुरू होने जा रहा है। मेक्सिको सिटी के ऐतिहासिक स्टेडियम में होने वाले ओपनिंग मैच में को होस्ट मेक्सिको का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। वहीं रोनाल्डो के खराब फॉर्म के बावजूद पुर्तगाल ने वार्म अप मैच में नाइजीरिया को 2-1 से हराया। इसी के साथ पुर्तगाल की टीम वर्ल्ड कप के लिए कल फ्लोरिडा रवाना होगी। वहीं साउथ अफ्रीका के मिडल फील्डर मैकोइना का बयान, हम उलटफेर के लिए तैयार। इसी के साथ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया 20 जून को करेगा इंडियन एथलेटिक अवार्ड्स की मेजबानी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहे।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
11: प्रिया, next month मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
12: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
11: अच्छा, वो क्या?
12: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
11: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
12: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
11: सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
13: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
11: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
13: बिल्कुल, ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओमजोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
14: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
4: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
14: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
4: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
14: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
4: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
14: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
15: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
16: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
17: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
16: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
17: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
16: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
17: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
18: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
19: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

वहम गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is
2: 0400-234-235.
3: Get ready Brisbane. आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026. शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक. एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन. यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज. और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स. एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले. सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग. तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13. ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर. लॉग ऑन टू brisbane.com या मेला कार्निवल.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर. डोंट मिस इट.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी.
3: डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
4: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है,

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: जा रही हूँ।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
3: ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਡਿੱਬੇ ਬੋਤਲੋਂ ਸੇ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਕਮਾਏ। ਆਪਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਯੋਗ ਖਾਲੀ ਕੈਨ, ਬੋਤਲ ਔਰ ਕਾਰਟਨ ਪਰ 10 ਸੈਂਟ ਕਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਮ ਬਿਨ ਕੋਇਨ ਕਹਤੇ ਹੈ। अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स और चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही।
4: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
5: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
4: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
5: अरे, उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
4: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
5: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
4: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
5: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
6: आई आई आई सुदुम से यार।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644 35 पर। याद रहे 04006444 35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448-381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

हां जी एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी, वेलकम बैक रेडियो ब्रिस्टोनी 107.1 FM ते जी तुसी बने हुए हो ते मैं थोड़े नाल थोड़ी अपनी दोस्त ते होस्ट आरचे संदेश चालक। अगली फिल्म हैगी है जेड़ी उसका नाम भी थोड़ा डिफरेंट जा हैगा है। असी बिंग पंजाबी सानू इस तरह के नाम समझ नहीं आते, पर कोई गल नहीं, सानू नाम समझ ना कहानी सुनी हो असी खुश हो जाने हुने है ना, यही गल है ना। तो देखो अगला नाम भी इसे तरह का, तो उसका नाम है जी थानी ओरुवन नाम हैगा। ते ए तमिल सिनेमा दिना सब तो बेहतरीन कल्ट थ्रिलर फिल्मा विचो एक हैगी है। इसकी सब तो वड्डी खासियत इस दा विलन सिद्धार्थ अभिमन्यु है, जो बेहद शातिर ते पढ़िया लिखा है। कहानी एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर ते इस मास्टरमाइंड विलन दे विचकार दिमाग दे खेड दी है की है। सब कुछ इस विच दिमाग दा खेड ही है, होर कुछ नहीं। एमडीबी रेटिंग 8.4 यानी कि बहुत ज्यादा शानदार है। इस नूं तुसी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एमएक्स प्लेयर ते इंजॉय कर सकते हो।

0: जा रही हूँ।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव Under the Stars, Tarun Raniga, Ricky from Sydney और Diman Roy लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार Bollywood musical concert, full of energy and classical hits. And wait, रात को आसमान चमकेगा एक unforgettable fireworks display. सबसे best part, entry is absolutely free, including parking. तो diary में date note कर लीजिए, Saturday, June 13. ज्यादा जानकारी के लिए राज को call करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbane.com और क्लिक करें इवेंट sections पर। Don't miss it.
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹੈ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
3: ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਡਿੱਬੇ ਬੋਤਲੋਂ ਸੇ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਕਮਾਏ। ਆਪਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਯੋਗ ਖਾਲੀ ਕੈਨ, ਬੋਤਲ ਔਰ ਕਾਰਟਨ ਪਰ 10 ਸੈਂਟ ਕਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਮ ਬਿਨ ਕੋਇਨ ਕਹਤੇ ਹੈ। अपने बिटकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स और चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
4: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक और फाइनल्स संडे 14 जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स और चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: रही हूँ।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: प्रिया, नेक्स्ट मंथ ममा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
10: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
9: अच्छा, वो क्या?
10: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
9: लेकिन ममा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
10: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbani.com या mela carnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: suku, suku.
1: आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो briswani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: रही हूँ।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्क, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ ममा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन ममा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल श्रोताओं। जीवन आधार की नैया में आज एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। जीवन आधार हमारी वो प्रस्तुति जिसके साथ हम करते हैं अपनी और आपकी सुबह की एक खास शुरुआत। आज भी स्मरण करेंगे उस परम शक्ति का, उस खुदा का, उस ईश्वर का, उस वाहेगुरु का, उस जीजस का, जिसने हमें जीवन का सही संदेश दिया है, जीवन की सही शिक्षा हम तक पहुंचाई है और जिसके लिए हमारी सारी प्रार्थनाएं हैं। आइए आगे बढ़ते हैं जीवन आधार में इस एक अगले गीत के साथ। सुनते रहिए हमारे साथ रेडियो ब्रह्मवाणी 1701 AM।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जीवन आधार सताक्षी के साथ। और गुरु की महिमा का मंडन हर धर्म में किया गया है, क्योंकि गुरु के बिना जीवन अधूरा है। गुरु ही है जो आपको जीवन का सही संदेश देता है, आपको ईश्वर से मिलाता है, उस सर्वशक्तिमान से मिलाता है, आपको आपके कर्मों की ओर लेकर जाता है और जीवन का सही पाठ पढ़ाता है। शायद इसीलिए भगवान ने भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। यानी भगवान श्री कृष्ण ने, गोविंद ने भी गुरु को खुद से ऊपर स्थान दिया है। आइए गुरु को नमन करते हैं इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मवाणी पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

जीवन आधार का आनंद ले रहे हैं आप रेडियो प्रस्वानी पर और अपनी सुबह को खास बना रहे हैं। दोस्तों, जब भक्ति कानों में पड़ती है, जब आपकी शुरुआत उसके साथ होती है जिसे आप मानते हैं, तो यकीन मानिए जीवन सरल हो जाता है, सार्थक हो जाता है और मन आनंदित हो जाता है। इसी मन को आनंद से भरेंगे इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

आज जिस दौर में हम और आप आ गए हैं, रिश्तों की मर्यादा भूल रहे हैं, रिश्तों की वैल्यू कहीं खो रही है। हम अक्सर अपनी जबान पर कंट्रोल ना करते हुए न जाने कितना कुछ कह देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं अगर बाद में आपको पछतावा भी होता है तो भी आप अपनी कही गई बातें वापस नहीं ले सकते। और रिश्ते एक गांठ से बंध जाते हैं जिसे चाहकर भी आप कितना भी पछताएं, लेकिन उस गांठ के बिना उस रिश्ते को नहीं चला सकते हैं। इसी बात पर जीवन आधार में बढ़ेंगे आगे। आइए सुनते हैं ये अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो ब्रजवाणी सताक्षी के साथ।

हमारा और आपका सफर जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 107.1 AM पर। आइए इस सफर में आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी।

रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ जीवन आधार। हम सब चाहे किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म में विश्वास करें, लेकिन ईश्वर का नाम हम सब तभी लेते हैं जब हम पर कोई विपदा आती है, कोई मुसीबत आती है या कोई कष्ट हमारी जिंदगी में आता है। बिना कष्ट के ईश्वर को याद करने का समय हम में से किसी के पास नहीं है। आज कल परसों कर लेंगे पूजा या कर लेंगे आराधना, यही कहते हैं हम। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आप दुख में ईश्वर को याद करते हैं तो दुख आने का इंतजार ही क्यों करना। अगर अच्छे दिनों में भी ईश्वर को याद किया जाए तो शायद वो दुख आपके जीवन में आएगा ही नहीं। इसलिए प्रार्थना करते रहिए, उस परमपिता से जुड़ते रहिए और सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी।

रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं जीवन का आधार, जीवन आधार। जी हाँ, जीवन के पन्नों को हम एक आधार दे रहे हैं, अपनी और आपके जीवन को एक नया अर्थ दे रहे हैं कुछ खास बातों और यहाँ पर हमारे पेश होने वाले कुछ खास गीतों के साथ। एक और ऐसे ही गीत के साथ बढ़ेंगे आगे। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अक्सर जब भी आपको सफलता मिलती है तो एक घमंड, एक ईगो, एक अहम आप में घर कर ही जाता है, लेकिन ऐसे बड़े होने का क्या फायदा जब आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, उल्टा अपने अहम को इतना ऊंचा कर देते हैं कि लोगों को आपसे भय हो जाता है, आपसे डर हो जाता है। याद रखिए, वही इंसान सही है, अच्छा है और संतुष्ट है जो अपना जुड़ाव आसमान पर पहुँच कर भी जमीन से रखे। इसी बात पर आगे बढ़ेंगे जीवन आधार में एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

आज एक और फिर से हमारा जीवन के जुड़ाव से जुड़ा सफर जीवन आधार। कल फिर से सुबह की शुरुआत हम इसी सफर के साथ करेंगे और जब तक हम और आप कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए और उस शक्ति को, उस परम पिता को, उस खुदा को याद करते रहिए, उससे जुड़ते रहिए। नमस्कार।

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, नमस्ते अदाब, सत श्री अकाल जी। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चांदनी जैन। जी हां, और आप सभी के लिए हमेशा की तरह ये कार्यक्रम यानी कि चांदनी का सफर लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारा समय हम सभी बिताते हैं और बहुत प्यारे प्यारे गीतों के साथ। दोस्तों, आज की हम ताजा खबरें जानेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड पॉजिटिव वाइब्स जो आपके दिन को बना देंगे और भी खास। तो इस खास को और भी खास बनाने के लिए सबसे पहले सुनते हैं ये गीत, उसके बाद हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बहुत सारी अपडेट्स के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेडियो प्रसवानी में। तो दोस्तों आइए इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं कुछ अपडेट्स के साथ। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिस्बेन की कुछ ओलंपिक अपडेट की। दोस्तों ब्रिस्बेन में 2032 ओलंपिक्स के मेन स्टेडियम प्रोजेक्ट पर काम ऑफिशियली शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटमेंट भी है और कुछ जगहों पर पब्लिक डिस्कशन भी चल रही है। ये ब्रिस्बेन के फ्यूचर को बदलने वाले सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है। वैसे दोस्तों ब्रिस्बेन ओलंपिक्स 2032 के लिए तैयार हो रहा है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर आपको एक ओलंपिक स्पोर्ट चूज करना हो जिसमें आप मेडल जीत सकते हैं, वो कौन सा होगा? जल्दी जल्दी से मैसेज करके बताइए। तो आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं अगला गीत।

हाँ जी, ये कार्यक्रम है हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप सब तक पहुंचाने का। तो दोस्तों, अगली अगर हम बात करें तो क्वींसलैंड में रेल सिस्टम को और स्मार्ट बनाने के लिए नए डिजिटल सिग्नलिंग प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है। इससे जो है हमारे फ्यूचर में ट्रेन सर्विसेज और एफिशिएंट होने की उम्मीद है। दोस्तों, ऑफिस जाते वक्त आप गाने सुनना पसंद करते हैं या फिर कंप्लीट साइलेंस? वैसे तो आप सभी मेरे तरह ही है, गाने सुनना ही पसंद करते होंगे, है ना? और साथ में आपकी अपनी दोस्त जाननी की कुछ ना कुछ टॉक्स। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ये ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी और इस सेगमेंट में पुरानी यादें ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों याद है वो जमाना जब मिस्ड कॉल ही मैसेज होता था, जब संडे का मतलब शक्तिमान और फैमिली के साथ टीवी टाइम होता था और जब रेडियो पर हम अपना फेवरेट गाना सुनने के लिए घंटों इंतजार करते थे, उसके लिए हमेशा लाइन में लगे रहते थे कि अब कौन सा सॉन्ग आने वाला है। आज भी दोस्तों उन यादों की मिठास बिल्कुल ही अलग है क्योंकि पुराने जमाने की जो यादें हैं ना वो हमेशा यादें बनकर ही रह गई, क्योंकि आज के टाइम पर टेक्नोलॉजीज इतनी बढ़ चुकी है कि हम वो पुरानी मेमोरीज जो है वाकई ही हकीकत में नहीं ला सकते, बदल नहीं सकते। आजकल के बच्चे जो है टेक्नोलॉजी के साथ इतने जुड़ चुके हैं, मोबाइल्स हो गया, टीवी हो गया, बहुत कुछ मतलब ठीक है बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन हम पुराने टाइम पे इंडोर गेम्स अलग खेलते थे, आउटडोर गेम्स अलग खेलते थे बच्चों के साथ और बहुत सारा टीवी में इतना वेट करते थे। उस टाइम तो दूरदर्शन वाला ही चैनल आया करता था, मतलब वो याद सच में मिठास भर देती है, उन यादों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आप लोगों की ऐसी कौन सी यादें हैं जिसके लिए आप घंटों इंतजार किया करते थे और कभी कभी तो हम दूसरों के घर में भी टीवी देखने जाते थे। कुछ ऐसे चैनल्स होते थे जो लोगों ने चलाए होते थे और हम दौड़कर अपना सारा काम खत्म करके वहां पर देखने जाते थे, जैसे चित्रकार आता था, बहुत ऐसे ऐसी चीजें थे। तो आप बताइए कि आपकी ऐसी कौन सी फेवरेट सीरियल था या फिर कौन सा फेवरेट ऐसा शो था जिसे आप बहुत पसंद करते थे, जल्दी से मैसेज करके जरूर बताइए। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

हां जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्मानी। दोस्तों, बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री में नए प्रोजेक्ट्स और सॉन्ग्स लगातार रिलीज हो ही रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको बस यही इन्फॉर्मेशन देनी है कि वीकेंड आने वाला है। वीकेंड दूर नहीं है, बस आ ही गया। तो अपने फेवरेट प्लेलिस्ट रेडी रखिए और मूड को म्यूजिकल बनाइए। जी हाँ, बहुत प्यारे प्यारे गीतों के साथ और मेरे इस ट्रैक के साथ सुनते रहिए रेडियो प्रिस्मानी।

आइए वहीं पर इंडिया की एक अपडेट जान लेते हैं। आप जानते हैं इंडिया में टेक्नोलॉजी और डिजिटल इनोवेशन जो है उस पर लगातार फोकस बढ़ रहा है। डिजिटल सर्विसेज और जो ऑनलाइन फैसिलिटीज है आम लोगों की जिंदगी को और भी आसान बना रही है। तो आइए इसी के साथ मैं आपका ये प्यारा सा मूड जो है आसान बनाती हूँ, यानी कि बहुत ही खुशनुमा बनाती हूँ इस गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रेसवाणी।

वैसे दोस्तों आप सभी को बताया जाए कि जो ब्रिस्बेन फेस्टिवल है उसको लेकर तैयारियां तेजी से चल रही है। फेस्टिवल में म्यूजिक, आर्ट्स और कल्चर इवेंट्स का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो ब्रिस्बेन फेस्टिवल 2026 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। दोस्तों ब्रिस्बेन में आपको फेवरेट फेस्टिवल या फिर कम्युनिटी इवेंट कौन सा है, यानी कि ब्रिस्बेन में जो भी फेस्टिवल होता है या फिर कोई भी कम्युनिटी इवेंट होता है उनमें से सबसे फेवरेट आपका कौन सा है, जल्दी से बताइए। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, आप सब सुन रहे हैं रेडियो ब्रजवाणी। तो कैसे हैं आप सभी, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आप सभी को टाटा बाय बाय कहने का, क्योंकि अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे आप सभी के बीच लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारी अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन। जाते जाते आप सभी के लिए, सफलता हमेशा बड़े कदम लेने से नहीं मिलती, बल्कि रोज छोटे छोटे कदम लगातार लेने से मिलती है। इसीलिए दोस्तों, कुछ भी चीज अगर हमने पानी है ना, तो उसके लिए बड़े बड़े कदम रखने की जरूरत नहीं है। अगर हम छोटे छोटे कदम रखकर ही छोटे छोटे चीजें, छोटे छोटे स्टेप वाइज काम करते करते आगे बढ़ते हैं, तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। अगर हम कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर हमने सीढ़ी लगा रखी है, स्टेयर्स, अगर हम सीधा टॉप में पहुंचने की कोशिश करें तो हम हमेशा गिरेंगे। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाजत। हमेशा मुस्कुराते रहें, पॉजिटिव रहें, और अपने एनवायरनमेंट को भी हमेशा पॉजिटिव ही रखें। तो दोस्तों, आप सभी का दिन बहुत अच्छा रहे। हैव अ नाइस डे एंड हैव अ वंडरफुल वीकेंड। तो दीजिए मुझे इजाजत, सुनते रहिए रेडियो ब्रजवाणी।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ओमान के पास एक और जहाज MT जलवीर पर हमला, चालक दल में भारतीय नाविक भी शामिल। खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि उसे शिनास बंदरगाह के तट पर MT जलवीर जहाज से जुड़ी एक और घटना की जानकारी मिली है। दूतावास इस पूरी स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। भारतीय दूतावास ने प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमें आज सुबह ओमान के शिनास बंदरगाह के पास MT जलवीर जहाज से जुड़ी घटना की जानकारी मिली है। अमेरिका के हमले में ईरान के दो बड़े वाटर टैंक तबाह, 20,000 घरों में पानी की सप्लाई ठप। अमेरिकी हमलों ने ईरान के दक्षिणी शहर सिरिक में दो प्रमुख जल जलाशयों को निशाना बनाया, जिससे अस्थायी रूप से हजारों लोगों की पानी की आपूर्ति ठप हो गई। अमेरिकी सेना ने ओमान के तट पर ईरान द्वारा अमेरिकी सेना के एक आपची हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के दावे के बाद होर्मुज के केशम द्वीप और दक्षिणी शहरों जास्क व सिरिक पर देर रात हमले किए। लंदन में बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज को लगातार मिल रही धमकियां, ब्रिटेन पुलिस ने दी सुरक्षा। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज गौतम पटेल और उनके परिवार को लंदन में कड़ी सुरक्षा दी गई है। ये कदम तब उठाया गया जब उनके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं और उन पर शारीरिक हमले भी हुए। ये धमकियां दाऊदी बोहरा समुदाय के आध्यात्मिक नेता के उत्तराधिकार पर उनके 2024 के फैसले से जुड़ी हैं। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। बांग्लादेश भारत बॉर्डर पर तनाव, नो मैंस लैंड में फंसा व्यक्ति, BSF और BGB के बीच तीखी बहस। मेघालय सीमा के रास्ते कथित तौर पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले 55 वर्षीय एक बांग्लादेशी नागरिक को सीमा सुरक्षा बल द्वारा वापस बांग्लादेश भेज दिया गया। हालांकि BSF के इस पुशबैक अभियान के दौरान बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि BGB ने शुरुआत में उस व्यक्ति को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था। इस आपसी टकराव के कारण वो व्यक्ति कुछ समय के लिए नो मैंस लैंड में फंसा रहा। होर्मुज में जहाज पर अमेरिकी हमलों के खिलाफ UN में गरजा भारत, कहा हमारे नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। अमेरिकी हमले में ओमान के तट के पास वाणिज्य जहाज सेटेबेलो पर हुए हमले में दो भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि एक अभी लापता है। भारत इस प्रकरण पर अपनी गहरी चिंता व आपत्तियों से एक दिन पहले ही अमेरिकी दूतावास में कार्यवाहक राजदत्त को तलब कर अवगत करा चुका। अब संयुक्त राष्ट्र में भी भारत में पश्चिम एशिया संकट के बाद लगातार कारोबारी जहाजों पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया गया। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग नीलम का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, 4 मिनट हो गए हैं 7 बजकर और हमारे साथ आप जुड़ गए हैं सुबह का सफर में। अभी से लेकर 9 बजे तक हमारा ये खूबसूरत साथ होने वाला है और आज है 12 जून 2026 का सफर, फ्राइडे है आज। दोस्तों हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू वेरी मच। कहना चाहेंगे वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैं हूँ आपके साथ ही नीलम, ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आपको। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे।

दोस्तों विश करना चाहेंगे वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड अ हैप्पी फ्राइडे. हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत करते हैं आपका. चलिए देखते हैं कि आज फोरकास्ट में क्या बताया गया है. ब्रिस्बेन के लिए 15 डिग्रीज अभी है, टॉप्स रहेंगे 23 और मोस्टली सनी डे रहेगा, लेकिन 85% चांस ऑफ रेन आज के लिए बताया गया है. वीकेंड में सैटरडे को 90% चांस रेन बताया गया है, संडे को 55% चांस ऑफ रेन बताया गया है. मेलबर्न 12 डिग्रीज अभी है, टॉप्स रहेंगे 20 और कैनबरा के लिए 8 डिग्रीज अभी है, मोस्टली क्लाउडी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 16. विंड गस्ट 9 किलोमीटर एन आवर बताया गया है. सिडनी के लिए 15 डिग्रीज अभी है, टॉप्स रहेंगे 21. विंड गस्ट 18 किलोमीटर एन आवर बताया गया है. गोल्ड कोस्ट के लिए 16 डिग्रीज अभी है, क्लाउडी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 22. विंड गस्ट बताया गया है 20 किलोमीटर एन आवर और 60% चांस ऑफ रेन बताया गया है गोल्ड कोस्ट के लिए. सनशाइन कोस्ट 18 डिग्रीज अभी है, क्लाउडी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 22. विंड गस्ट 22 किलोमीटर एन आवर बताया गया है, 70% चांस ऑफ रेन आज बताया गया है सनशाइन कोस्ट के लिए. दोस्तों रास्ते पे आप है, बेहद ख्याल रखिएगा अपना. भीगा भीगा सा जो जो यू नो जो एनवायरमेंट है, स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ वेटनेस इन दैट. और अभी बारिश तो हो नहीं रही है, लेकिन रास्ते भी काफ़ी भीगे हैं. एंड तो रास्ते पर आप है अपना बेहद ख्याल रखिए. वैसे आज 85 मोस्टली सनी डे रहेगा, लेकिन 85% चांस रेन है, देर शाम को होगा. और चलिए आगे बढ़ते हैं. 10 मिनट हो गया है 7 बजकर. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी, आपकी अपनी पहचान.

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और डिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: तो सुबह का सफर में आगे बढ़ते हैं। वैसे लाइफ में सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे प्राइसलेस चीज जो क्या है, वो है टाइम, समय। समय पर हमारे पास एक मैसेज है, वो शेयर करना चाहेंगे। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में मेला, और ना समझ आई तो मेले में अकेला। बहुत खूबसूरत जो लाइन है, एंड दिस इज सो ट्रू। समय से अगर जिंदगी को अगर आप समझ लेते हो तो अकेले में मेला है, और अगर नहीं समय से समझ पाए तो मेले में भी अकेले हो आप। और यह टाइम दोबारा लौट कर नहीं आता है। जो टाइम अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं, इज सो प्रेशियस, और इसको उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना आप किसी और चीज को देते हैं, यू नो। एंड यह सो ये जिंदगी, ये टाइम, ये एज भी नहीं आएगा। सो लिव टू द फुलेस्ट कहना चाहेंगे। हैप्पी फ्राइडे।
3: सुनो,
4: कहो,
3: कहा
4: सुना।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे और समय हुआ कि विश करें आपको हैप्पी बर्थडे। दोस्तों आज 12 जून है और आज अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो विश करना चाहेंगे वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे आपके लिए, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पीपल हैविंग एंड सेलिब्रेटिंग द एनिवर्सरीज। मेनी मेरी बेस्ट विशेस टू यू। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे और थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि आप अगर ऐप पे रेडियो रिजवानी सुन रहे थे और शायद आपको डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि ऐप में कुछ काम हो रहा है, सो वी गोना गेट अ न्यू वन होपफुली। लेकिन इन द मीन टाइम आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, हमें लिसन कर सकते हैं थ्रू दैट, और गूगल पर सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट है www.brizvani.com.au, वहां पर आप हमें लिसन कर सकते हैं फॉर द टाइम बींग। सॉरी, अभी ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसके लिए हमें खेद है दोस्तों। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा गीत लाए हैं।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म शुद्ध देसी रोमांस से. व्हेन मिर्जा गालिब सेड, ना जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए, ना जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने गुनहगार हो गए. बहुत ही खूबसूरत से ये पोएट्री मुझे बहुत अच्छा लगा, सोचो शेयर कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं. आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी, आपकी अपनी पहचान, नीलम का साथ है. अभी भी जुड़े हैं, स्वागत कर लेते हैं आपका.

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: वेलकम बैक दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि जब घर का हम देखते हैं वास्तु या फेंगशुई में विश्वास रखते हैं, तो कुछ ना कुछ आप करते रहते हैं ताकि आपका जो घर का जो वास्तु है वो अलाइन रहे या एनर्जी अच्छा रहे। तो ये भी बात है कि जब आप किसी होटल में जाते हो तो वहां का भी एक एनर्जी रहता है आपके रूम का। लुक बैक एंड थिंक कि कभी किसी होटल रूम में आप गए एंड यू डिडंट फील राइट। यू नो, कितनों ही हीटर चालू कर लो, आपका रूम वार्म नहीं होता। यू फील स्लाइटली स्केयर्ड मे बी। आई हैड दैट एक्सपीरियंस। एंड तो हमारे पास एक फेंगशुई, थ्री फेंगशुई टिप्स है एक्चुअली। कहते हैं कि जो होटल है उनका भी एक एनर्जी होता है, एंड होटल रूम्स का, क्योंकि ऐसा होता है कि जो पर्सन पहले से रहा हो उसके अंदर, रूम के अंदर, वो एक एनर्जी लीव बिहाइंड करता है, एक यू नो एक इमोशन लीव बिहाइंड करता है। तो किस तरह से आप डिस्पेल कर सकते हैं इसको एंड अपने आप से अलाइन कर सकते हो? रूम तो क्लीन होता ही है, लेकिन एनर्जी नहीं क्लीन होता है, यू नो। एंड सो कहते हैं, ये फेंगशुई टिप है कि जब आप एंटर करते हो रूम को, जस्ट बिफोर यू एंटर यू हैव टू नॉक 3 times। एंड इससे क्या होता है, दिस अनाउंसेस योर प्रेजेंस एंड हेल्प्स रीसेट। दूसरा वाला है, व्हेन यू गो इन द रूम नाउ यू फ्लश द टॉयलेट। सो ये करता है, मूविंग वाटर हेल्प्स क्लियर स्टैग्नेंट एनर्जी। एंड तीसरा वाला है, अगर आप अकेले जाते हो होटल में, है आप ट्रेवल कर रहे हो होटल में अकेले, फैमिली के साथ नहीं हो, तो ऑब्वियसली बेड पर भी आप अकेले हो गए, तो दूसरा वाला जो साइड होता है, कहते हैं उसे अनटच्ड न रखो। विद अ पिलो मूव कर लो या यू नो जस्ट मूव थिंग्स अ बिट, क्योंकि ये होल्ड नहीं करता है। सो इट डजंट होल्ड एम्प्टी इन्विटेशन बिसाइड यू। So this is interesting, and I think अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको use कर सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसे incidents हुए हैं जहां पर आप you have been in a hotel room and you didn't feel right, and आपको so these kind of things you can do to dispel and get the energy to align with you। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।

दोस्तों, इस टू आफ्टर एट और एक घंटे का सफर बाकी है. हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, स्वागत कर लेते हैं आपका. ब्रिस्बेन में 15 डिग्रीज है और हमारे पास एक ट्रैफिक इंसिडेंट रिपोर्ट है. मार्शल रोड टारागिंडी, यहां पर मल्टी व्हीकल क्रश हुआ है. लेन और लेन्स आर रिड्यूस नॉर्थ बाउंड टूवर्ड्स हॉलैंड पार्क वेस्ट. और चलिए आगे बढ़ते हैं.

तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे और आगे बढ़ते हैं। लेटली मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि अगर जो मैं इंस्टाग्राम देखती हूँ तो ढेर सारे पोस्ट बताते हैं कि किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। मे बी इट्स जस्ट बिकॉज आई एम सर्चिंग सम स्टफ, तो हाउ यू नो हाउ इंटरनेट पर जब आप कुछ सर्च करते हो तो ढेर सारे फीडबैक्स ढेर सारे जगह जाते हैं एंड देन वही सारे मिले जुले फीड्स आपके पास आने लगते हैं। सो मे बी दैट्स वाई। और तो रीज़न ये है, तो जिसके बारे में मैं बात कर रही थी या करने जा रही हूँ, तो वो कुछ ऐसा जा रहा है कि अवेयरनेस क्रिएट करे कि किस तरह से आप अपने आप को सेफ रखें। वैसे ये बात जो चली है तो हमारे फैमिली में मेरी जो नीस है, तो एक दिन क्या हुआ, बिकॉज यूनी जा रही थी तो आई थिंक उसको उसने उबर कैच किया ट्रेन स्टेशन जाने तक के लिए। तो क्या हुआ, वहाँ पर जो ड्राइवर था उसने कहा कि दूसरे रास्ते से, तो शी ऑलवेज गोज दैट वे, एंड उस दिन ड्राइवर दूसरी रास्ते से ले जा रहा था, तो उसने कहा कि कैन यू स्टॉप द कार राइट नाउ और एंड बिकॉज व्हाई आर यू टर्निंग दिस वे, एंड द ड्राइवर सेड ओ आई एम नॉट फ्रॉम हियर, आई एम सो सॉरी, आई एम फ्रॉम एडिलेड, सो आई डिडंट नो। तो लेटर ऑन आपने देखा होगा, शायद आपके पास भी आया होगा कि इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं जहां पर ड्राइवर्स आपको कह रहे हैं कि वो दूसरी जगह से आए हैं इसीलिए नहीं जानते। लेकिन कौन के पास ऐसा, कौन ऐसा है जो मैप्स नहीं यूज करता? सो द लॉजिक बिहाइंड दैट, सो जस्ट बी केयरफुल। अगर आप कोई भी राइड ऑर्डर करते हैं, बिफोर यू एंटर इन अ कार, अपने जो मैच करते हैं नंबर्स, रजिस्ट्रेशन नंबर वो, एंड ये भी पूछा जाता है आपसे, इट हैज़ कम टू माई नोटिस कि जो पढ़ने के बाद इट हैज़ कम टू माई नोटिस कि ढेर सारे क्वेश्चंस अराउंड ये होते हैं कि क्या आप अकेले सफ़र कर रहे हो। मुझे बताया गया था कि आप अकेले ने दो पीपल बैठने वाले हैं, so there should be a red flag. So yeah, this is an indication that information has been asking about whether you're traveling alone or are you expecting someone to be there. So just be careful. Agar aap ride sketch kar rahe hain, to this thing can happen with you. You can come across these kind of situations. Aisa nahi hai ki koi bhi jo Uber chala raha hai wo bad person hai, aisa nahi hai, but just creating awareness for people who are traveling in it. ये इसकी बात कर रहे हैं हम। और अभी ऐसा होता है कि एक अगर कुछ रोंग करता है तो सारे अगर उसी पे वही प्रोफेशन में रहते हैं तो यू फील डाउटफुल अबाउट अदर पीपल एज वेल, इवन दो वो अच्छे लोग होते हैं। सो ये क्लियर माइंड, आपको न्यूट्रल माइंड रखना होगा। और फिर दूसरा वाला जो सिचुएशन, आई हैव रेड दिस आर्टिकल, इज कि अगर आप, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट होटल्स एंड इट्स फनी, एंड सो इस ये लेडी के साथ ऐसा हुआ कि वो होटल रूम में थी एंड इट वाज अराउंड 2 o'clock, 2 or 3 के बीच में, एंड देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर, तो एंड शी वॉज इन रूम 716, तो नॉक, तो इसने डोर खोला नहीं, तो शी लिसन्ड, एंड द पर्सन दूसरी तरफ डोर के बाहर से वो कह रही है कि प्लीज कैन आई यूज योर फोन, क्योंकि मेरे रूम वाला फोन नहीं चल रहा। एज अ एनी पर्सन यू वुड क्विकली ओपन द डोर एंड हेल्प दिस पर्सन, राइट? लेकिन आजकल के ज़माने में ऐसा हो गया है दैट यू कांट डू दैट, एंड दिस इज रियली रियली स्केरी थिंग। तो दिस पर्सन ने कहा कि व्हेन आई हर्ड द पर्सन्स वॉइस, मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, आई एम नॉट गोना ओपन दिस डोर। द डोर वॉज लॉक्ड प्रीवियसली ऑब्वियसली, बिकॉज ये 2:30 इन द मॉर्निंग था, एंड सो शी left the door as it was locked. She told the person, usne kaha ki aap wahi raho
और आप कौन रूम से हो? तो उसने कहा 718 से, एंड माई नेम इज अमेंडा. तो शी सेड ओके आई कॉल द फ्रंट डेस्क एंड आई दे कम एंड हेल्प यू. तो सो शी वेंट एंड कॉल द फ्रंट डेस्क एंड दे फाउंड आउट कि जो रूम 17 है देर वॉज नो पर्सन बाय द नेम अमेंडा स्टेइंग देयर एंड द रूम वॉज एम्प्टी. तो क्या हुआ, as soon as this person went to the door, she could hear quick footsteps going down. And obviously, when they found out, the person took the staircase and wo person akele nahi thi. Around the corridor, there was another man standing there. So, just imagine if this person, this jo aurat room mein thi, agar usne door khol diya hota, to kya hota uske saath? वो वुमन भी आती और उसके साथ जो दी अदर गाय हु वाज स्टैंडिंग अराउंड द कॉर्नर, दे वुड हैव एम्बुश्ड हर एंड किल्ड हर मे बी वाज स्टोलन स्टफ फ्रॉम हर. सो दिस इज वेरी वेरी स्केरी. वैसे भी अगर आप कहीं भी जाते हो, आपका पहला इंस्टिंक्ट होता है, राइट? अगर कोई आपसे हेल्प मांगता हो, आपका पहला इंस्टिंक्ट होता है कि आप उन्हें हेल्प करें. लेकिन अगर आप कोई रास्ते से आप मिडनाइट या ट्रेवल कर रहे हो, आपको किसी पर्सन को आपने देखा रास्ते पर है एंड आस्किंग फॉर हेल्प, वुड यू स्टॉप एंड हेल्प? थिंक. आई नो इट्स स्केरी. आई डोंट थिंक आई विल, बट आई विल कॉल emergency services to come and help, because aaj I know it's such a sad world ki aajkal aap aisa nahi kar sakte kyunki aapka apne aap ko khud danger mein daal rahe ho. To dosto aapka jo basic jo human instinct hota hai wo to help, wo hota hai ki to get down and help. But agar aap aise raste par hai jahan par sunsan hai aur wahan ek person help ke liye ask kar raha hai raste par, obviously agar accidents hue hain and there are a couple of people there, then you might go and help. But ek akela insaan achanak se raste par aata hai help ke liye, I don't think so it's a good idea to get down from your car. So बस सोचने वाली बात है. यू कैन थिंक अबाउट इट एंड सबका अपना अपना यू नो थॉट होता है इसके बारे में. एंड यू कुड थिंक यू वेरी हार्ड, बहुत हार्ड हार्टेड है, हेल्प नहीं करना चाहते हैं, थिंग्स लाइक दैट. आप अपने आप गिल्टी फील करोगे, आई एम श्योर एवरीवन विल. एंड बट द थिंग इज कि जान है तो जहान है. आई नो, बट there's always emergency services who can come around and help. And chaliye dosto aage badhte hain. Bahut hi khoobsurat sa geet laaye hain hum.

तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे. और एक फैक्ट है हमारे पास हिंदी फिल्म के बारे में. तो हमारे बॉलीवुड में कुछ ना कुछ होते ही रहता है, लेकिन एक मूवी आई थी 1913 में, राजा हरिश्चंद्र. तो ये एक पहली फिल्म थी, फर्स्ट इंडियन फीचर फिल्म. राजा हरिश्चंद्र फीचर्ड एन एंटायरली मेल कास्ट बिकॉज वुमेन वेर स्ट्रिक्टली फॉरबिडन फ्रॉम एक्टिंग एट द टाइम. ऑल फीमेल रोल्स इंक्लूडिंग द क्वीन वेर प्लेड बाय मैन. ये मूवी मैंने नहीं देखी है, लेकिन आई थिंक आई वुड लव टू वॉच इट. चलिए आगे बढ़ते हैं सुबह के सफर में.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: वेलकम बैक दोस्तों. आधे घंटे का सफर बाकी है और याद दिला दे कि 9 पर जुम्मा प्रोग्राम है. और चलिए, छोटी छोटी जो आदतें होती हैं जो हमें हमेशा अपने आप पे वर्क करना पड़ता है, तो जो छोटी छोटी आदतें कुछ उसे बदलने से बड़े बड़े बदलाव हो जाते हैं. जैसे कि रास्ते पर ढेर सारी कोई भी आप काम कर रहे होते हो, रुकावटें तो आती ही रहती है, लेकिन जो मुश्किलें आते हैं तो रास्ता बदले अपना लक्ष्य नहीं. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई मुश्किल आते हैं, अच्छा चलो जो दूसरा वाला प्लान था वो कर लेते हैं, पहले वाला रहा. लेकिन आपका दिल तो पहले वाले पे लगा है, राइट? तो आप दूसरा वाला प्लान बी पर क्यों आते हो? क्योंकि आप तो मेहनत करना है आपको, एंड आपको पहुंचना है वहां जहां आपने सोचा है, तो आधे पर क्यों? बिकॉज इसको भी आप पूरा टाइम अपना जो पूरा एफर्ट है वो नहीं दे पाओगे, बिकॉज आपका दिल तो वहां अटका हुआ है, राइट? तो ये हमेशा याद रखे दोस्तों कि कोई भी आप सोचते हो, कोई प्लान होता है आपका, मिशन होता है, आपने सेट किया हुआ है, स्पष्टता बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है पहले से. राइट इट डाउन, मेक इट ऑफिशियल, ब्लैक एंड व्हाइट. आई लाइक टू डू दैट. अगर मुझे कुछ करना होता है तो आई लाइक टू राइट इट डाउन एंड आई नो इट्स देयर एंड आई हैव टू टिक इट ऑफ. एंड अगर जो मेरे ग्रुप में या कोई भी, वी आर ऑल एज अ यूनिट, घर पर भी कोई चीज होता है एंड वी हैव डन इट, वी टिक इट, सो वी नो इट्स डन. यू हैव सीन इट. अगर आपने टिक किया है, दैट मीन्स यू हैव सीन इट एंड यू हैव डन इट. तो हमारा ऐसा ही फील है. और मेरे अपने पर्सनल, सभी लोग डिफरेंट होते हैं, अपना कुछ डिफरेंस है होते हैं. अपने फोन पर आप अपना नोट बनाते हो, ऐसा कुछ करते हो ना, तो अपना क्लियरिटी आप वहां से लाते हो कि मुझे ऐसा करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, बस. सो यू हैव टू बी क्लियर. छोटी सी बदलाव है, अनफोकस्ड नहीं होना चाहिए आपको. इधर उधर ढेर सारे चीजों को लेकर आप दिमाग में चलोगे तो कभी आपको एक फोकस नहीं पा पाओगे, स्पष्टता नहीं पा पाओगे, कि कोई क्लैरिटी नहीं होता है आपका. तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों. सो नेक्स्ट टाइम यू आर मेकिंग एन एफर्ट टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, आपका आपने अपने गोल सेट किया होता है, रुकावटें आती हैं, लेकिन थोड़ा सा बदलाव कीजिएगा, रास्ता बदले लक्ष्य नहीं. और एंड बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू डू. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं.

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Anuj.
2: Badan pe sitare lapete hue, to jaan tamanna ke dhar ja rahi ho.
3: Get ready Brisbane. आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और डिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbani.com या mela carnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

वेलकम बैक दोस्तों. और न्यूज़ में बताया गया है, अ मैन हैज़ बीन चार्ज्ड विद मर्डर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इनटू द एलिजेड किडनैपिंग ऑफ अ वुमन इन सिडनीज़ नॉर्थ वेस्ट. पुलिस बिगैन इन्वेस्टिगेटिंग द डिसअपीयरेंस ऑफ अ 58 ईयर ओल्ड वुमन ऑन ट्यूसडे जून 9th आफ्टर इट वॉज रिपोर्टेड दैट शी हैड नॉट रिटर्न्ड होम. फैमिली मेम्बर्स टोल्ड पुलिस दैट लास्ट हैड कॉन्टैक्ट विद द वुमन एट 4:50 PM ऑन मंडे द आफ्टरनून बिफोर. शी हैड टोल्ड फैमिली शी वॉज मीटिंग अ रिलेटिव इन विंस्टन हिल्स. द कार वॉज फाउंड ऑन डॉटसन स्ट्रीट इन द सेम सबर्ब एट अबाउट 9:30 AM ऑन ट्यूजडे. At about 1:40 PM yesterday, police arrested a 33-year-old man who was sitting in a white Toyota Hilux in bushland along Panel Fire Trail, Tomerang, about 20 kilometers south of Nowra on the New South Wales south coast. A search warrant was later carried out at an address in Sanctuary Point, about 25 kilometers south of Nowra. The man has been charged with murder and was refused police bail to appear in court today. The body of the 58-year-old woman has not been found and the investigation is ongoing. Human remains are found in search for Sydney woman missing since 2018. And ye bhi news mein hai, human remains have been found in the search for woman police believe was murdered in 2018 in Sydney. In December 2018, detectives established Strike Force Admiralty to investigate the disappearance of Nadia Sensory, 71, Sensoy, 71, from her home in Prospect in the city's west. Dosto, to aap ye sab news mein hai, aap check out kar sakte hain. Aur few tax and super all changes in the changes in effect from July 1st, 2026. तो ये भी आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन जाकर. चलिए आगे बढ़ते हैं.

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे और आगे बढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा गीत लाए हैं।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे और दोस्तों हमारे पास एक ये क्या था, इट वाज जस्ट अ साइन ऑन द साइड ऑफ द रोड और कुछ ऐसे जाता है, हर चीज़ दिल पे मत लिया करो, दिल के पास दूसरे भी काम होते हैं. एंड आई एम श्योर इट्स सच अ ब्यूटीफुल वर्ड एक्चुअली, कि सभी चीज़ को दिल पर मत लिया करो, वी हैव अदर थिंग्स टू डू, कम ऑन. और इसी के साथ साथ दोस्तों अब तो जाने का वक्त हो गया है और आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया. यू हैव अ लवली डे, ब्यूटीफुल वीकेंड, मिलते हैं अगले हफ्ते, टिल देन नमस्कार.

है रेडियो 79 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूँ हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79.1 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79.1 ब्रिस्बेन पर।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे।
2: और अभी से लेकर 10 बजे तक रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबके लिए शुभ हो। और आज जुमा है और आप सब सुनने वालों को जुमा मुबारक। आप सबको हमारा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहु। और शुरुआत कर रहे हैं हमारा रेगुलर सेगमेंट आज जुमा है।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

0: अल्लाह वो जिंदा जावेद हस्ती जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वो ना सोता है और ना उसे ऊंग लगती है। जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके। जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ है, और उसकी मालूमात में से कोई चीज उनकी गिरफ्त इदराक में नहीं आ सकती इल्ला ये कि किसी चीज का इल्म वो खुद ही उनको देना चाहे। उसकी हुकूमत आसमानों और जमीन पर छाई हुई है और उनकी निगेबानी उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है, बस वही एक बुजुर्ग को बरतर
1: और रेडियो 71 ब्रिस्बेन पर मैं हूं आपके साथी फिरोज खान। अभी से लेकर 10 बजे तक हर सप्ते की तरह आज जुमा है, प्रोग्राम के बाद आपके लिए पेश करते हैं चुने हुए मजहबी कवालियां।

और खुली किस्मत जब और आई तेरे हाथ पांव में ताकत, निकल के घर से गुलिस्तान में जिस घड़ी पहुंचा, उछलता कूदता मैदान में जिस घड़ी पहुंचा, तो अपनी खातिर खुद ही बना।

बना जो शेख तो हर वक्त साथ में लकड़ी, बना इमाम को मिंबर पे हाथ में लकड़ी, तू जो मरा तो फिर अहबाब ने ये काम किया कि सुला के लकड़ी के तख्ते पे तुझको गुस्ल दिया। बनी जो अर्थी तो अर्थी में भी वही लकड़ी, मकान में भी तेरे साथ ही गई लकड़ी, तेरे जनाजे को देखा तो वो भी लकड़ी का, मिला ये आखिरी साया तो वो भी लकड़ी का, तेरी चिता भी तो लकड़ी बगैर जल ना सकी, अजीब लकड़ी थी मरने पे भी जो टल ना सकी, कब्र में तुझको दफन किया तो कब्र में बरगा।

ना पाया जिसका हम पाया, लतीफुल जिस्म ऐसा के नहीं है जिस्म का साया, जमाने में जो बनकर रहम

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूँ हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक इस स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर।

0: हर रविवार को 10 से लेकर 12 बजे तक आपके साथ फिरोज खान, यादों का सफर, हिट्स ऑफ 50s, 60s और 70s से निकाली हुई चुने हुए संगीत, रविवार को 10 से लेकर 12 बजे तक।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415